0: வந்தே மாதரம்.
1: சுஜலா சுஃபலா மலய ஜீதலா சஸ்ய.

ये आकाशवाणी सागर है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और

0: चार स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फूकवॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। 6:05 हुए हैं। ये वक्त अर्चना का है। आइए अर्चना की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में इस मात्र वंदना के साथ।

अभी आपने समूह स्वर में ये मातृवंदना सुनी। रचना डॉक्टर ललित मोहन की थी। और अब चलते हैं भक्ति संगीत की तरफ।

अभी श्रोता भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। आपको बताना चाहेंगे, सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। कुछ पुराने फिल्मी गीत होंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सुबह 6:40 पर। 7 बजे का वक्त सुबह सुबह का और 7:05 पर कृषि संकेत। आपके फरमाइशी गीत मनछाई गीत में सुबह 7:20 पर। संगीत सरिता 7:45 पर। 8:15 पर आप बुंदेली लोकगीत और लोक भजन का कार्यक्रम सुनेंगे। लोक संगीत का वक्त 8:15। पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर सुनिएगा सुबह 8:30 पर। स्कूली शिक्षा में नवाचार और भविष्य की संभावनाएं, इस विषय पर केंद्रित है ये कार्यक्रम। गेस्ट हैं धर्मेंद्र शर्मा और भेंटकर्ता दीपक निषाद। 10 बजे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर आप राग रागनी कार्यक्रम सुनेंगे। 10:30 बजे लेकर आएंगे आपकी पसंद कार्यक्रम। 11 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा।

0: का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
1: शाम 5:02 पर आप युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे और 5:30 बजे संगीत सरिता।

0: श्रोताओं, शाम 6:30 पर आनंद लीजिएगा कुछ सदाबहार गीतों का। 6:45 का वक्त रहेगा लोक रंग का। 8:00 आपके लिए लेकर आएंगे चित्रपट संगीत की सौगात और 8:20 पर संगीत सरिता। रात्रि 9:00 आप मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपने फरमाइशी फिल्मी गीत सुन सकते हैं।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और 5वें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: श्रोताओं, आपको एक बार पुनः स्मरण करा दें, आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय रहेगा स्कूली शिक्षा में नवाचार व भविष्य की संभावनाएं। गेस्ट होंगे धर्मेंद्र शर्मा और भेंटकर्ता दीपक निषाद। कार्यक्रम विवरण अभी श्रोता सुन रहे थे।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। 6:30 बस होने को हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज आप इसकी 48वीं कड़ी सुनेंगे, जिसमें मुख्य गायक स्वर रहेगा ए हरिहरन का।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

अभी श्रोता श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। आज आपने इसकी 48वीं कड़ी सुनी, जिसमें मुख्य गायक स्वर रहा ए हरिहरन का। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। 6:40 बस होने को हैं। अब श्रोता सुनेंगे कुछ पुराने फिल्मी गीत कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं ये गीत फिल्म मदारी से। लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर हैं इस गीत के लिए। फारूक कैसर ने गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने ये संगीत तैयार किया।

अगला गीत जो आप सुनेंगे उसे गाया है गीता दत्त और मुकेश ने। अपना घर फिल्म से ये गाना है जिसे प्रेम धवन ने लिखा है और रवि ने इसके लिए संगीत तैयार किया है।

सुनो, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखा।

0: खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म पुनर्मिलन से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गीत को गाया, गुलशन बावरा ने लिखा और सी अर्जुन ने इसके लिए संगीत तैयार किया।

और प्रोग्राम की आखिरी पेशकश के रूप में आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गाना, जिसे कमर जलालाबादी ने लिखा, ओपी नैयर ने ये संगीत तैयार किया और ये गीत आपके लिए फिल्म फागुन से।

अभी श्रोता भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे जातायां स्पीडबोट इत्येतस्यां दुर्घटनायां दिवंगतानां 15 भारतीय पर्यटकानां पार्थिवावशेषाः स्वदेशं प्रत्यानीताः। वियतनामस्थेन भारतीय दूतावासेन सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् एते पार्थिवावशेषाः हो ची मिन्ह नगरात् वियतनाम विमानयान सेवया मुंबई नगरम् अभ्युपगताः। गत शुक्रवासरे फुक्वोक द्वीपस्य समीपे 32 भारतीय पर्यटकान् 4 स्थानीय नौका कर्मचारिणश्च वहन्ती स्पीडबोट इति द्रुत नौका जले निमग्ना जाता। अस्यां दुर्घटनायां 15 पर्यटकाः दिवंगताः। दुर्घटनायां जीविताः 16 जनाः अपि भारतं प्रत्यागताः। एकः पर्यटकः अधुनापि वियतनाम देशे चिकित्सालये चिकित्साम् अधिगच्छति। अस्मिन् मासस्य आरम्भे पश्चिम बंगालस्य तटात् लुप्ता मत्स्यजीविनां नौका बंगालखात्यां निमग्नावस्थायां प्राप्ता। अस्यां दुर्घटनायां 9 मत्स्यजीविनां निधनं सुनिश्चितमस्ति। 6 जनाश्च अद्यापि अन्विष्यन्ते। नौकायाम् आहत्य 15 मत्स्यजीविनः आसन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च दुर्घटनाम् आलक्ष्य गहनं शोकं प्रकटितवन्तः। तैः दिवंगतानां परिजनेभ्यः शोकसंवेदनाः प्रकटिताः। व्रणितानां शीघ्रस्वास्थ्यलाभाय कामनाश्च कृताः। प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय साहाय्य कोषात् प्रत्येकस्य दिवंगतस्य निकटतम परिजनाय 2,00,000 रूप्यकाणां, प्रत्येकस्मै व्रणिताय च 50,000 रूप्यकाणाम् अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः भारत अमेरिका व्यापार वार्तासु वार्तावाहिन्याः गतिरोध सम्बन्ध प्रतिवेदनानि सर्वथा असत्यानि निराधाराणि च इति कथितवान्। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे सः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोः दलद्वयं संतुलितस्य वाणिज्यदृष्ट्या हितकरस्य उद्योगिनां कृषकाणां श्रमिकाणां उपभोक्तॄणां च अनुकूलस्य व्यापारसन्धेः सम्पादनाय सक्रियतया कार्यरतमस्ति। सः अवदत् यत् गतमासे नवदिल्ल्याम् अमेरिकादेशस्य व्यापार प्रतिनिधिना जेमिसन ग्रीर इत्यनेन सह अस्मिन् विषये अत्यन्तलाभप्रदा वार्ता अभवत्। भारत ऋतुविभागेन अद्यपर्यन्तं बिहार ओडिशा प्रदेशयोः प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। ऋतुविभागेन उक्तं यत् अद्य अरुणाचलप्रदेशे, छत्तीसगढे, झारखण्डे, नागालैण्डे, मणिपुरे, मिजोरमे, त्रिपुरायां, पश्चिम बंगाले, सिक्किमे, असमे, मेघालये च पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचण्ड वृष्टिः भवितुमर्हतीति। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलम् अद्य बर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे त्रिक्रीडा श्रृंखलायाः प्रथमायाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायाम् आतिथेयम् इंग्लैण्ड दलं सम्मुखीकरिष्यति। भारतीय समयानुसारम् अपराह्ने 3:30 क्रीडायाः आरम्भः भविष्यति। विराट कोहली, रोहित शर्मा च भारतीय दलं सुदृढं कर्तुं पुनरागमनं कृतवन्तौ स्तः। तत्रैव जसप्रीत बुमराह अपि पुनरागमनं करोति। आयरलैण्ड इंग्लैण्ड देशयोः विरुद्धं 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलासु पराजयानन्तरं भारतं पुनरागमनं कर्तुमिच्छति। शुभमन गिल इत्यस्य नेतृत्वे दलं गुरुवासरे कार्डिफ नगरे द्वितीया एकदिवसीया स्पर्धा क्रीडिष्यति। श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमा च क्रीडा अस्मिन् मासे 21 दिनांके लॉर्ड्स इत्यत्र भविष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 7 बजे हैं। वक्त है कार्यक्रम सुबह सुबह का। इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, सफल व्यक्तियों के शब्दकोश का एक जाना पहचाना शब्द है दृढ़ संकल्प। जी हाँ, दृढ़ संकल्प का अर्थ है उद्देश्य या इरादे की दृढ़ता। ये हमारे प्रयास में अडिग रहने के लिए हमारी इच्छा शक्ति और एकाग्रता की शक्ति है, यानी सही रास्ते पर बने रहना और अपने निर्णयों, समाधानों और इरादों के प्रति हमें अडिग रहना। अपने सपनों और इच्छाओं को साकार करने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करने की क्षमता रखना आवश्यक होता है। और इच्छा शक्ति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि जीवन में जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं उनका सामना करने की क्षमता भी देती है। ये जब हम संकल्प शक्ति को मजबूत करते हैं तो हम अपने आप को सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाने लगते हैं। आप हम सब ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में इच्छा शक्ति का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हमें अनुशासन, समर्पण और धैर्य भी सिखाती है। आपने देखा होगा जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तब यही वो शक्ति है जो हमें निरंतरता बनाए रखने में बहुत मदद करती है। और दृढ़ता बनाए रखना इसलिए जरूरी है कि हम अपने संकल्प पर अगर दृढ़ रहते हैं तो हम असफलताओं से डरते नहीं हैं। ऐसे लोगों के सामने जो भी असफलता या समस्या आती है वो उस समस्या या असफलता को कुछ नया सीखने के अवसर के रूप में देख लेते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी असफलता भी उन्हें हिम्मत ही दे रही होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इच्छा शक्ति हमें न केवल सफलता की ओर बढ़ाती है बल्कि ये हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार भी करती रहती है। मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग अक्सर देखा गया है कि बहुत ही मजबूती से अपने कदम जमाए रखते हैं जिस भी मार्ग पर वो चल रहे होते हैं उस पर, और ये उनकी संकल्प शक्ति ही होती है जो उनसे ऐसा करवाती है। संकल्प शक्ति हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सदा प्रेरित करती रहती है, कहीं ना कहीं हमें याद दिलाती रहती है कि अभी हमें मंजिल तक पहुंचना है। वो ना हमें कभी थकने देती है ना कभी हारने देती है। साथ ही साथ ये संकल्प शक्ति हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी देती है। जब हम हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को भी पहचान पाते हैं, हम अपने आप को समझ पाते हैं कि हम क्या करने में सक्षम हैं। अपनी ही इच्छा शक्ति से हम अपनी ही पहचान को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यदि इच्छा शक्ति ही नहीं होगी तो कुछ भी करने में हमारी जो क्षमताएं हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को सदा जगाए रखें और सही दिशा में कदम बढ़ाते रहें तो कोई कारण नहीं कि सफलता हमसे दूर जा सके। आज सुबह सुबह बस इतना ही। इस कार्यक्रम से इजाज़त चाहती हूँ मैं साहिब। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी सागर के कार्यक्रमों के साथ। श्रोताओं, अब समय हो रहा है कृषि चर्चा पर आधारित हमारे कार्यक्रम कृषि संकेत का। मिट्टी में फास्फोरस का महत्व आज इस विषय पर रहेगा ये अंक, जिसमें विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए के सिंह।
2: फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसकी मोबिलिटी बहुत कम है, जिसकी गतिशीलता बहुत कम है, इसलिए फास्फोरस की जो उपयोग क्षमता है वो बहुत कम है। पौधों द्वारा 20-25% जो भी देते हैं उसका केवल 20-25% जो है पौधों द्वारा लिया जा पाता है, बाकी मिट्टी में रहता है, अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए जरूरी ये है कि भूमि में, फिर वही बात आती है कि जैविक कार्बन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगर जीवांश कार्बन हमारी भूमि में अच्छी मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, 0.5% से ऊपर है, 0.6% से ऊपर है, तो निश्चित रूप से जो 25% है वो बढ़ करके लगभग 30-35 या 40% तक पहुंच सकता है, अगर कार्बन पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ पे कार्बन कैसे बढ़ेगा, उपयोग क्षमता हमें बढ़ाना है तो जैविक स्रोतों का उपयोग तो जरूरी है ही, साथ ही फास्फोरस युक्त उर्वरकों के लिए एक जो जैव उर्वरक आता है, नाम इसका जैव उर्वरक है लेकिन उर्वरक नहीं है, ये शुद्ध रूप से जैविक जीवाणु खाद हैं, इनका उपयोग अगर हम मृदा उपचार के माध्यम से करें। यदि हम जैव उर्वरक जो फास्फोरस के लिए आता है उसका नाम है PSB, फास्फेट सालुलाइजिंग बैक्टीरिया यानी अस्फुर घोलक जीवाणु, अस्फुर घोलक जीवाणु का उपयोग हम मृदा उपचार के माध्यम से करें, अच्छी पकी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट में 50 किलो खाद में 2 किलोग्राम PSB कल्चर मिला दें और उसको 6-7 दिन के लिए रख दें, फिर खेत में उपयोग करें, 1 एकड़ क्षेत्र में उपयोग करें। इसी प्रकार से हमारे पास जितना रकबा है उस हिसाब से हम कल्चर लेकर के और गोबर की खाद में मिला के रख के खेतों में डालें, बखन्नी के समय खेतों में उपयोग करें, तो जो फास्फोरस की उपयोग क्षमता है वो 40-45% या 50% तक पहुंच सकती है। प्रारंभ में जब गोबर की खाद में मिला के रखें तो उसको अलग ढेर में 50 किलो गोबर की खाद में 2 किलोग्राम कल्चर, चाहे वो नत्रजन वाला कल्चर हो या अनाज फसल के लिए एजेटोबैक, 50 किलो के खाद की ढेर में अलग मिला के रख दें और PSB कल्चर दूसरे 50 किलोग्राम के ढेर में अलग मिला, लेकिन डालते समय दोनों को आपस में मिला करके सीधे खेत में बखन्नी से पहले डाल, तो इससे जो है उपयोग क्षमता हमारे फास्फोरस की और नत्रजन की दोनों की बढ़ती है और फसलों को अधिक मात्रा में तत्व प्राप्त हो। तो ये दूसरा तरीका है जो बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि किसान भाई गोबर की खाद इनके यहाँ कम हो पाती है या गोबर की खाद या कंपोस्ट अच्छी ढंग से नहीं बना पाते, जबकि बहुत पहले से इसका जो है प्रचलन इसके बारे में बताया जा रहा है कि नाडेप टाके में खाद कैसे बनाएं, फिर भी किसान भाई उसको बनाना नहीं चाहते या बनाने में दिक्कतें आती हैं, जो भी समस्या हो, तो उसकी जगह कल्चर एक सशक्त माध्यम है। तो फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसकी मोबिलिटी बहुत कम है, जिसकी गतिशीलता बहुत कम है, इसलिए फास्फोरस की जो उपयोग क्षमता है वो बहुत कम है। पौधों द्वारा 20-25% जो भी देते हैं उसका केवल 20-25% जो है पौधों द्वारा लिया जा पाता है, बाकी मिट्टी में रहता है, अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए जरूरी यह है कि भूमि में, फिर वही बात आती है कि जैविक कार्बन अच्छी मात्रा में होना चाहिए, जीवांश कार्बन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगर जीवांश कार्बन हमारी भूमि में अच्छी मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, 0.5% से ऊपर है, 0.6% से ऊपर है, तो निश्चित रूप से जो 25% है वो बढ़ करके लगभग 30-35 या 40% तक पहुंच सकता है। यदि हम जैव उर्वरक जो फास्फोरस के लिए आता है उसका नाम है PSB, अस्फुर घोलक जीवाणु का उपयोग हम मृदा उपचार के माध्यम से करें, अच्छी पकी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट में 50 किलो खाद में 2 किलोग्राम PSB कल्चर मिला दें और उसको 6-7 दिन के लिए रख दें, फिर खेत में उपयोग करें, 1 एकड़ क्षेत्र में उपयोग करें। इसी प्रकार से जब हम हमारे पास जितना रकबा है उस हिसाब से हम कल्चर का उपयोग लेकर के और गोबर की खाद में मिला के रख के खेतों में डालें, बखन्नी के समय खेतों में उपयोग करें, तो जो फास्फोरस की उपयोग क्षमता है वो 40-45% या 50% तक पहुँच सकती है। 50 किलो गोबर की खाद में 2 किलोग्राम कल्चर, चाहे वो नत्रजन वाला कल्चर हो या अनाज फसल के लिए एजेटोबैक, तो 50 किलो के खाद की ढेर में अलग मिला के रख दें और PSB कल्चर दूसरे 50 किलोग्राम के ढेर में अलग मिला, लेकिन डालते समय दोनों को आपस में मिला करके सीधे खेत में बखन्नी से पहले डाल, तो इससे जो है उपयोग क्षमता हमारे फास्फोरस की और नत्रजन की दोनों की बढ़ती है और फसलों को अधिक मात्रा में तत्व प्राप्त हो।
1: मिट्टी में फास्फोरस का महत्व, इस विषय पर आपने ये कृषि संकेत का अंक सुना। विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह थे। ये आकाशवाणी सागर है। अब थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे हमारे भोपाल केंद्र से।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। विधानसभा सत्र में विधेयक के आने की संभावना। मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ के निवेश से AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित होगा। दतिया उपचुनाव के लिए अंतिम दिन 32 नामांकन पत्र दाखिल किए गए और प्रदेश में आज हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने कल संहिता का प्रतिवेदन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपा। प्रतिवेदन में समिति की रिपोर्ट 3 खंडों में संकलित है। पहले खंड में समिति ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य के विभिन्न विधियों तथा प्रथाओं का विश्लेषण कर अपनी अनुशंसाएं दी हैं। दूसरा खंड मध्य प्रदेश में प्रचलित विधियों एवं नियमों के दृष्टिगत तैयार किया गया है। तीसरे खंड में जन परामर्श

0: भोपाल में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से एआई रेडी डेटा सेंटर स्थापित करेगा। ये जानकारी कल भोपाल में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में दी गई। कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में 51 प्रमुख गतिविधियां संपन्न हुई। इन गतिविधियों से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश और 34,000 से अधिक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
1: मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। 2024 से टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की यात्रा से प्रारंभ हुआ।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश को 46,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के बाद से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर आया। इस अवधि में 22 नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। वहीं नमो ऐप और माई जीओवी पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस अभियान में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की विशेष सहभागिता रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की इकाई आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक दीर्घा विज्ञान के लोकप्रियकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार तथा अनुभवात्मक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका विकास नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के तकनीकी मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन भोपाल के सहयोग से किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में BSNL की रणनीतिक समीक्षा और योजना बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की अस्थायी बढ़ोतरी दर्ज की है।
3: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
4: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
3: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत चल रही निर्वाचन प्रक्रिया के तहत कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, जिसके तक 28 अभ्यर्थियों द्वारा कुल 32 नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर दतिया के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह प्रमुख तौर पर शामिल हैं। भाजपा उम्मीदवार का पर्चा भरवाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा भरवाने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। क्रिएट इन इंडिया।

चैलेंज के तहत एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सृजकों की पहचान करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनके कौशल को बेहतर बनाना है। सीजन 2 का लक्ष्य ऐसी उद्योग संचालित, सरकार समर्थित और युवाओं पर केंद्रित चुनौतियों को पूरा करना है जो रचनात्मक प्रतिभा की पहचान करें और उन्हें निखारें। इसके साथ ही कौशल को बेहतर बनाने और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दें। इसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में सहयोग के अवसर पैदा करना भी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्य रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI ने मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के लिए दिए गए चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों को गलत बताया है। FCI ने कहा कि करीब 5 लाख मीट्रिक टन चावल के दुरुपयोग की खबरें निराधार हैं। जांच केवल लगभग 242 क्विंटल चावल के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है, जिसकी कीमत करीब 5,63,000 रुपये है। FCI ने स्पष्ट किया कि 1,160 करोड़ रुपये की राशि एथेनॉल कार्यक्रम के तहत डिस्टिलरियों को जारी किए गए चावल का मूल्य है, न कि कथित दुरुपयोग की रकम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपना चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा। इंग्लैंड के खिलाफ टीम ने 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। अब रुख करते हैं मौसम का। मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा इस बार जुलाई माह में माइनस में आ गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में सामान्य से 3% कम पानी गिरा है। पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में एवरेज से 17 और पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल में 10 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में दस्तक अभियान का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। जबलपुर रेल मंडल ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2,74,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत माखन नगर की सभी 64 पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। डिंडोरी के धमन गांव में एक पेड़ माँ के अभियान के तहत, माँ के नाम अभियान के तहत 30 हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 फलदार पौधे लगाए गए। मंडला के PM स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पद्मी में प्रवेश के लिए 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाजापुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अतिरिक्त CLC राउंड के तहत प्रवेश मेले का आयोजन किया गया और बैतूल में खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कर अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी सागर है। 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस प्रोग्राम में आपके साथ हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत आपकी फरमाइश का फिल्म जीने की राह से मोहम्मद रफी का गाया हुआ, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अनुरोध करता है। गायत्री कॉलोनी रहली से हेमराज ठाकुर, राकेश श्रीवास्तव, नवल किशोर नामदेव, राघवेंद्र सोनी, नरेंद्र, जीतू नामदेव, छोटू, उमा सराफ, राम जैन, मुंडा टोला, डॉडी लोहारा जिला बालोद से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश और माहिर नेताम, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित, पीयूष कुमार और हैप्पी आनंद, दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु, अनुराग, सलोचना चारुवी और प्रणव सावले।

मेरे हुजूर, ये फिल्म का नाम है जिससे अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, ये बोल हसरत जयपुरी के हैं और शंकर जयकिशन का संगीत है इस गीत के लिए जिसको सुनना आपने चाहा है। कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी, मोहम्मद अफजल मल्लिक, यवतमाल वितर्भ महाराष्ट्र से यह हैं संतोष खडसे और विनोद खडसे, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन, हेमलता, डिंपल कुमारी और भाव्या देवांगन, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, पाकुड़ झारखंड से ये अनुरोध है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और बोहड़ा गाछी, पश्चिम बंगाल से आप हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से अनुरोध आया है राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति का।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आपके पत्रों से और व्हाट्सएप से मिली फरमाइशों को हम पूरा कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। अगला गीत फिल्म सच्चा झूठा से है। किशोर कुमार ने गीत को गाया है, हिंदी वन ने लिखा है, कल्याण जी आनंद जी ने संगीत तैयार किया है। आप सबने सुनना चाहा है। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला रोशनी, चेतन, विशाल मनवर और बेबी प्रियांशी। गाँव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला शाहपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, शुभदीप गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। और ये अनुरोध है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू, साथ में शशांक और सीमा साहू का। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया और माया कान्हा और कृष्णा ने भी सुनना चाहा है गीत को। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून। आप सब भी सुनना चाहते हैं ये गीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।
3: और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना, जिसे हसरत जयपुरी ने लिखा है, शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया है। ये गीत है फिल्म झुक गया आसमां से, जिसके लिए हमें फरमाइश मिली मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रणेता सिद्धांत गवाड़कर, टुक टुक गवाड़कर। साथ ही आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से अनुरोध करता है वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी धवनी गवाड़कर और उनके परिवार के तमाम लोग। अडार नादघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा ने भी सुनना चाहा है इसी गीत को। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर और ये अनुरोध ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागनी रिया रेनू और रोनिका यादव का।

प्रोग्राम के आखिर में आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म प्रेम गीत से ये गाना, जिसे अनुराधा पूर्णवाल और सुरेश वाडकर ने गाया है, इंदिवर ने लिखा है और संगीत जगजीत सिंह का है। आप सुनना चाहते हैं इस गीत को। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरसान, अबान और अब्बासी परिवार के तमाम लोग। नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, आरजू और गुड्डू। आइए सुने प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश।

अभी श्रोता आपने फरमाइशी गीत सुन रहे थे कार्यक्रम मनचाहे गीत में। आपको याद दिला दें, आज सुबह 10:30 बजे आपकी पसंद प्रोग्राम में भी आप सुनेंगे अपने फरमाइशी गीत। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। 7:45 हुए हैं, वक्त संगीत सरिता का है। आइए सबसे पहले सुनते हैं भूपेंद्र और मिताली की गाई हुई ये गजल।

अभी श्रोता संगीत सरिता कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं, आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज सुबह 8:30 बजे आप सुनेंगे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय रहेगा स्कूली शिक्षा में नवाचार व भविष्य की संभावनाएं। गेस्ट होंगे धर्मेंद्र शर्मा और भेंट करता रहेंगे दीपक निषाद। आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसका अनुप्रसारण किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए थोड़े समय प्रतीक्षा करते हैं।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
3: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का

0: जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। 8:15 हुए हैं, समय है लोक संगीत का। आइए सबसे पहले सुने लक्ष्मी त्रिपाठी से ये देवी गीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।
3: और आइए अब सुनिए ये लोग।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आइए अब सुने देवकी नंदन सकवार से ये श्रृंगार की।

अभी श्रोता लोक संगीत कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत और भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय है स्कूली शिक्षा में नवाचार व भविष्य की संभावनाएं। गेस्ट हैं धर्मेंद्र शर्मा और भेंटकर्ता दीपक निषाद।

0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, आप स्कूल संचालक हैं, साथ ही साथ आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: धन्यवाद।
0: धर्मेंद्र शर्मा साहब, हम आज बात करेंगे स्कूली शिक्षा के ऊपर। इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, क्या क्या परिवर्तन और बदलते दौर, बदलते डिजिटल माध्यम के साथ साथ स्कूली शिक्षा में देखने को मिल रहा है। आप चूंकि बहुत नज़दीक से स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं और 20, 25, 30 वर्षों का आपका अनुभव भी इस क्षेत्र में है, तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि स्कूल शिक्षा का वर्तमान स्वरूप क्या है और पहले और अब में आप क्या परिवर्तन देखते हैं?
1: स्कूल शिक्षा में जो वर्तमान परिवर्तन है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में सबसे बड़ा बदलाव लेके आई है, और इसमें जो है शिक्षा का स्वरूप बदला है। खासकर प्री प्राइमरी शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा तथा जो है मिडिल और हाई स्कूल शिक्षा को लेकर जो है काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं। पहले शिक्षा का स्तर जो है 6 साल से प्रारंभ होता था, अब जो है परिवर्तित करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल से कंपलसरी शिक्षा जो है वो देने का प्रावधान किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और उसमें जो है ये कहा गया है कि खेल खेल में शिक्षा जो है वो दी जाए, और उसका स्वरूप जो है 5 धन 3 धन 3 धन 4 के रूप में उसको किया गया है। इसका विस्तृत स्वरूप यदि हम देखें तो 5 अर्थात कक्षा प्ले स्कूल की नर्सरी, LKG और UKG तथा कक्षा 1 और 2 को मिलाकर ये 5 साल की शिक्षा है, और इसमें जो है ज्यादातर बैगलेस एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कहानी और दूसरे तरीकों से जो है बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है। प्रयास ये किया गया है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए और उनकी आदतों में उनको संस्कार सिखाए जाएं, और सामाजिक परिवेश से उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको सिखाई जाएं, और उसके साथ साथ उनको शिक्षा प्रदान की जाए। फिर नेक्स्ट स्टेज जो है प्राइमरी शिक्षा का जो आता है वो 3 क्लासेस हैं जिनमें 3, 4 और 5वीं कक्षा है, जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन लिखना, इन्फॉर्मेटरी स्टेज उसको हम बोल सकते हैं
0: जी,
1: उसको हम देंगे। उसके बाद फिर आती है अनुभव करके शिक्षा देने की बात, तो फिर 6वीं 7वीं 8वीं में स्किल बेस्ड लर्निंग जो है, और साथ साथ जिस क्षेत्र में बच्चे का इंटरेस्ट है उस क्षेत्र की तरफ उसकी शिक्षा को जो है ले जाने का प्रावधान है। और पहले ये हुआ करता था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, पहले 10 धन 2 जो प्रणाली थी कि 10वीं तक जो शिक्षा थी वो 1 से लेकर 10 तक था, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का चुनाव होता था। अब 9th 10th 11th 12th की जो शिक्षा है उसमें 9 और 10 तो ठीक है सारे सब्जेक्ट उनको पढ़ने हैं, 11वीं से जो सब्जेक्ट उनको लेने हैं अब

0: वो चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर चाहें तो वो बच्चा साइंस के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, साइंस के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकता है, चित्रकला भी पढ़ सकता है, मतलब साइंस और आर्ट्स का मिक्सचर जो है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है,
1: इंटरडिसिप्लिनरी
0: है,
1: अंतर विषय है, किसी एक विषय तक आपको सीमित नहीं रखा
0: गया
1: है।
0: बिल्कुल,
1: आप अपने इंटरेस्ट अपने रुचि के अनुसार दूसरे विषयों को भी ले सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यानी विज्ञान के साथ आप कला के विषयों को भी पढ़ सकते हैं।
0: जी हाँ, और कला का विद्यार्थी
1: विज्ञान भी पढ़ सकता है। बहुत अच्छी बात है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो तमाम तत्व हैं, जो घटक हैं, उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। धर्मेंद्र शर्मा साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल शिक्षा के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बुनियादी तत्व हैं, घटक हैं, वो क्या हैं? उसके अलावा एक शिक्षक जब बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाता है तो किन बातों को ध्यान में रख करके वो पढ़ाता है, ये जो बेसिक उसके घटक हैं, उसको कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के?
0: बुनियादी शिक्षा जो है, हम यदि उसकी बात करेंगे तो मुख्य चीज जो है बेसिक एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अभी जो जोड़ी गई है, वो आंगनवाड़ी से जो है उसको शुरू किया है, और उसके साथ साथ 3 साल आंगनवाड़ी का जो है प्रशिक्षण देने के बाद फाउंडेशन एजुकेशन जो है वो फर्स्ट और सेकंड का स्टेज है ना, कक्षा पहली और दूसरी में फाउंडेशन का स्टेज है। अब शिक्षकों को उसमें नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ उन शिक्षकों को उसमें ट्रेन करने की भी आवश्यकता है, ताकि जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सही तरीके से परिचित हो सकें और बच्चों को सही तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकें। तो बेसिक एजुकेशन जो है, पहले आपने बच्चे को पढ़ाया, उसको लिखना सिखाया और उसको जो है रटा दिया, जैसे पहाड़े रटाना है, जैसे कहानी रटाना है, श्लोक रटाना है, इन पर ज़्यादा जो है फोकस किया जाता था। अब जो बुनियादी शिक्षा जो थोड़ा बहुत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाई है, वो ये लाई है कि अब आपको जो है उसकी समझ को डेवलप करना है, उसको जो है प्रायोगिक तौर पर जो है चीज़ें सिखानी है, और प्रयोग से जो है आगे चलकर उसको जो है वो सीखने का खुद उसको मौका देना है, ताकि जो है उसका विकास हो सके, उसका मानसिक विकास हो सके। तो बुनियादी शिक्षा जो है बेसिक एजुकेशन में ये परिवर्तन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, और उस चीज से काफ़ी चीज़ें हम लोगों को अभी डेवलप करनी भी होंगी, और साथ साथ हमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें हमको अंतर भी देखने मिल रहा है। बच्चों के मानसिक विकास में बहुत तेजी से अंतर आता है, तो इस चीज को जो है बुनियादी शिक्षा को हम यदि मूल्यपरक शिक्षा और जो है प्रायोगिक शिक्षा के साथ जोड़ेंगे तो निश्चित बात है कि आगे चलकर बच्चे का मानसिक विकास तेजी से होगा, उसके अंदर विवेकशीलता पैदा होगी जो कि पुरानी शिक्षा पद्धति नहीं पैदा करती थी। तो विवेक पैदा करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, समझ पैदा करना मुख्य उद्देश्य है, जो कि अब की शिक्षा पॉलिसी से जो है ज्यादा अच्छे से संभव हो पाएगा।
1: जी, समझ आधारित शिक्षा, विवेक आधारित शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और रटने से ज्यादा समझने पर ध्यान दिया गया है, ये आप बता रहे हैं शर्मा साहब। यदि हम बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं की, कंपटीशन की यदि हम बात करें, ट्वेल्थ के बाद के आप परीक्षाओं की बात कर लें या टेंथ के बाद भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ग्रेजुएशन के बाद तो होती ही हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में क्या जो वर्तमान शिक्षा है वो बच्चों के भीतर वो कौशल, वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो स्किल पैदा कर पा रही है जिसके हिसाब से वो ना सिर्फ भारत में, भारतीय बाजार में, बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से भी जॉब मार्केट के हिसाब से तैयार हैं?
0: अभी तक पुरानी शिक्षा पद्धति से यदि हम बात करें तो निश्चित बात है कि बच्चे जो हैं किसी एक फील्ड के लिए तैयार हो रहे थे, जैसे हम कंप्यूटर फील्ड करें, सॉफ्टवेयर फील्ड करें, ज़्यादातर बच्चे जो हैं इस फील्ड में जा रहे थे, ज़्यादातर इंजीनियरिंग में जा रहे थे, डॉक्टर्स बन रहे थे, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चीज़ें जो हैं अब आएंगी या आ रही हैं उसमें बच्चे का मल्टी डायमेंशनल विकास जो है होगा, उसके अंदर कौशल विकास होगा और उसके इंटरेस्ट की चीज़ें जो हैं उसको सामने आएंगी और अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र को वो सही तरीके से चुन सकेगा और उसमें आगे बढ़ सकेगा। और वैश्विक तौर पर यदि हम देखें तो यदि बच्चा अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाता है तो वो ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा अच्छे से अपने काम कर सकता है, और मल्टी डायमेंशनल चीज़ें जब वो सीखता है सब तरफ से तो निश्चित बात है कि उसको हर तरफ के फील्ड की नॉलेज होती है और हर जगह जो है वो काम करने के लिए कैपेबल बनता है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है ये सारी चीज़ें जो हैं स्किल डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है और नए क्षेत्र में बच्चों को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसे अभी हम देखें तो स्किल डेवलपमेंट के तहत नए लोन्स, मुद्रा लोन जो हैं वो दिए जा रहे हैं बच्चों को, स्टार्टअप्स जो है डेवलप करने के लिए, खुद की अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए स्टार्टअप्स के लिए डेवलपमेंट दिए जा रहे हैं। तो ये एक नया भारत है, एक नया बदलाव है जिसमें बच्चे अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं। केवल जॉब ओरिएंटेड शिक्षा नहीं, खुद का डेवलपमेंट करना ये सबसे बड़ी बात हो गई है। तो ये जरूरी है कि बच्चे जो है कौशल विकास करें, किस तरीके से उनको अपना आगे लेके जाना है ये उनके लिए अब ज्यादा अच्छे से संभव हो पाएगा।
1: स्टार्टअप हब के रूप में भारत विकसित हो रहा है, क्योंकि ज्ञान आधारित शिक्षा है, कौशल आधारित शिक्षा है, तभी ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। और सरकार की तरफ से भी वो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जहाँ पे उनको लोन्स मिल रहे हैं, सस्ते दरों पे लोन्स मिल रहे हैं, और आसानी से वो अपने आइडिया को अपने रोजगार में वो विकसित कर पाएंगे, उसको एक आकार दे पाएंगे। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये बताई कि अभी युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला भी बन रहा है, जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर भी बन रहा है। ये बड़ी बात, ये बड़ा बदलाव जो है देखने में आया है। शर्मा साहब, आगे भी बढ़ना चाहेंगे हम, और पारंपरिक जो हमारा ज्ञान आधार रहा है या ज्ञान की व्यवस्था रही है, जिसको भारतीय ज्ञान परंपरा या इंडियन नॉलेज सिस्टम हम बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। और कई बार बेसिक्स से जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप आसमान की ऊंचाइयों को छूइए, लेकिन साथ साथ जो आपका भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो आप में धैर्य, संस्कार, मूल्य, अनुशासन, ये सारी चीजों को विकसित करता है, जो आपको सफलता के शीर्ष पे विराजमान करवाए रहने के लिए, स्थापित बने रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ करके विकास करना कितना महत्वपूर्ण देखते हैं आप इसे?
0: भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो वास्तव में वैदिक काल में जो रही है उसमें करके सीखने की परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरु अपने शिष्यों में कौशल का विकास करते थे और उसके आधार पर ही जो है शिष्यों को आगे बढ़ाते थे, और उसके आधार पर गुरु दक्षिणा और उनकी गुरु परीक्षा भी होती थी, कॉम्पिटिशन होते थे जिसमें जो है बच्चे जो अपने कौशल का कार्यक्रम दिखाते थे और उसमें आगे बढ़ते थे, चाहे वो युद्ध कला की विद्या हो, चाहे वो दूसरे क्षेत्र में विद्या हो, व्यापार की विद्या हो या खेती की विद्या हो। हम बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं, उपमन्यु की है, अरुणी की है ना, धौम्य ऋषि के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो वैदिक ज्ञान परंपरा थी वह कौशल विकास करने की मुख्य ओर जो है जाती है। और जो अभी वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही थी वो मैकाले की सिस्टम चल रहा था, अब लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वह वैदिक काल से कहीं ना कहीं कौशल और उस चीजों को जोड़ती है, स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास इसी का माध्यम है। तो जो वर्तमान नई शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारे इस नए वर्तमान को जोड़ती है, साथ ही साथ बच्चों को एक नए विकास की योजना बनाएगा और साथ ही साथ नए परिणाम की ओर जो है उनको लेके जाएगा।
1: भारतीय शिक्षा नीति, जिसे हम अभी आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोल रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल रहे हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति है इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसे बोला जा रहा है। इसमें आपने ये बताया कि भारतीयों के लिए भारतीयता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति विकसित की गई है, और इसके स्रोत या इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं हमारे जो वैदिक काल में उपलब्ध शिक्षा नीति थी या शैक्षिक वातावरण था उससे लिया गया है, इसलिए भारतीयों के अंदर भारतीयों की जरूरतों के हिसाब से इसमें शिक्षा के घटक शामिल हैं जो उनके मूल्य, संस्कार, अनुशासन, इन सब चीजों का विकास करने पे भी जोर देते हैं। शर्मा साहब, आगे हम बढ़ना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि चूंकि डिजिटल युग है, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, आधुनिकीकरण की बात हो रही है, स्कूल शिक्षा भी कहीं ना कहीं उससे अछूता नहीं है, और स्कूल शिक्षा का या स्कूली शिक्षा का उससे जुड़े रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज बच्चे तैयार होंगे तभी कल के भविष्य का निर्माण वो कर पाएंगे। तो जब से ये डिजिटल एरा का चलन चला है तो स्कूल में, क्लासरूम में आप क्या परिवर्तन देखते हैं, क्या बड़ा बदलाव आया है?
0: अभी जो डिजिटलाइजेशन का युग आया है उसमें अब केवल ब्लैक बोर्ड की शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान सीमित नहीं है, अब ग्लोबलाइजेशन का एरा है और ग्लोबल वर्ल्ड अब बच्चे की मुट्ठी में। यदि हम देखें तो स्कूली शिक्षा में जो बदलाव आया है वो उपकरणों से लेकर और तमाम सारी चीजें जो है, कोडिंग है, रोबोटिक्स है, इन सब चीजों को लेकर जो है नया बदलाव आता जा रहा है। स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, मतलब बच्चे को जो है टेलीविजन बोर्ड से या एआई बोर्ड से जो है शिक्षा दी जाने लगी है। साथ ही साथ इंटरनेट के माध्यम से अब बच्चा जो है घर पर भी जो है अपने

0: लैपटॉप या मोबाइल से अपनी जो भी चीजें हैं उनको सर्च कर सकता है, उनको देख सकता है, उनको पढ़ सकता है। तो ज्ञान का जो विस्तार है वो निश्चित रूप से डिजिटलाइजेशन के युग में बहुत ज्यादा है। और ज्ञान के समुद्र में से काम की चीजें निकालना, ये सिखाना जो है अब वास्तव में गुरु का, शिक्षक का काम है। अब शिक्षक की भूमिका शिक्षक की नहीं रह गई, उसकी मार्गदर्शक की भी एक भूमिका हो गई,
1: मेंटर की भूमिका हो गई,
0: एक मित्र की भूमिका हो गई, एक पथ प्रदर्शक की भूमिका हो गई कि वो सही दिशा कहां दे पाए। क्योंकि मोबाइल में आप यदि कुछ सर्च कर रहे हैं तो कई बार कुछ चीजें गलत भी आ जाती हैं। तो डिजिटलाइजेशन के युग में जो है हम उन चीजों को कैसे जो है उस चीज से जो है सेपरेट करें, और हमको विवेकशीलता से अपने काम की चीजें निकालनी है वो ज्यादा जरूरी है। जैसे हंस दूध और पानी मिलाने पर दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, इसी तरह हमको भी जो है डिजिटलाइजेशन के इस युग में जो नया युग है उसमें हमें अपने बच्चे को सिखाना है कि हमको अपने काम की चीजें किस तरीके से उस डिजिटल से एरा से निकालनी है और अपने उसके अनुभव के हिसाब से अपने को उसको उपयोग करना है। तो क्लासरूम्स में बहुत सारा बदलाव आया है, अब जो है लेबोरेटरी जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। डिजिटल आपको बोर्ड्स जो है सारे 3D एनिमेशन वहीं दिखाते हैं, अगर बच्चा चाहे तो क्लासरूम में ही बैठे बैठे अपने फिंगर टिप्स से वो रिएक्शंस देख सकता है, वो रिएक्शंस कर सकता है। फिजिक्स के भी स्टडीज जो है वो भी जो है डिजिटलाइजेशन के युग में आसान हो गए हैं। तो इन सारी चीजों में बदलाव आया है जो स्कूल की क्लासरूम्स हैं उनमें भी, साथ ही साथ लैब्स में भी अब नई तरीके की मैथमेटिक्स लैब्स बनने लगी हैं, रोबोटिक्स लैब्स बनने लगी हैं, प्रैक्टिकल लैब्स अलग से बनने लगे हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं ही ऑलरेडी, कंप्यूटर ई लाइब्रेरी का सिस्टम है। तो ये काफी चेंजेस जो हैं ये आते जा रहे हैं। आजकल पुस्तकों से नहीं पढ़ते लोग मोबाइल से और जो है लाइब्रेरी से, लैपटॉप से देख के पढ़ते हैं।
1: ई बुक्स ई लाइब्रेरी
0: पुस्तकों का चलन कम हो गया है,
1: फिजिकल जो हार्ड कॉपी जो होती है उससे पढ़ने का चलन कम हो गया है। और आपने बताया कि क्लासरूम बहुत बदल चुका है, स्मार्ट क्लासरूम हो चुके हैं, टीचर्स को भी बदलते समय के हिसाब से अपनी भूमिका में बदलाव करना पड़ रहा है। अब टीचर पारंपरिक टीचर ना होकर के एक मेंटोर की भूमिका में आ गए हैं, बच्चों को सही गलत में क्या अंतर है उसको सेपरेट करना सिखाना टीचर का काम ज्यादा हो गया है, क्योंकि इंटरनेट पे जानकारियों का भरमार है।
0: बिल्कुल,
1: और उसमें से सही चीज बच्चे के लिए छांट पाना, उसमें उनकी मदद करना, ये शिक्षक की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शर्मा साहब, इंटरनेट के बढ़ते चलन के साथ साथ वैश्वीकरण का दौर है, आपने बताया ग्लोबलाइजेशन डिजिटलाइजेशन का दौर है, बच्चा इसमें खेल कूद की एक्टिविटी से भी कई बार दूर हो जाता है, क्लासरूम की एक्टिविटी से भी दूर है चूंकि वो स्क्रीन के सामने है, इसमें एक अलग तरह की अलगाव की समस्या आती है, लोनलीनेस की समस्या आती है, और ये समस्या कहीं ना कहीं उसको तनाव अवसाद की तरफ भी लेके जाती है, क्योंकि बच्चा अपनी बातों को टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, जो छात्र उनके साथ पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। ये जो अकेलेपन की समस्या उनको तनाव अवसाद की तरफ लेकर के जा रही है, उसके निपटारे के लिए, उसके समाधान के लिए किस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है?
0: पहली बात यह है कि हम बच्चे को केवल और केवल फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, जैसे सिस्टम है RTE का, राइट टू एजुकेशन का। राइट टू एजुकेशन में बेसिकली ये बात तो है कि बच्चे की दक्षता जो है बढ़ानी है, लेकिन साथ ही साथ दक्षता बढ़ाने के साथ साथ हम ये जो है चेक नहीं रख पा रहे हैं उसमें कि बच्चा जो है वास्तविकता में जो है वो उसकी दक्षता के काबिल है या नहीं। स्थितियां ये हो जाती हैं कि कई बार जो है नहीं भी लायक है तो भी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। तो बच्चे को फेल होना नहीं आ रहा, बच्चे को सेटबैक्स लगना नहीं आना, यानी कि बच्चे का ईगो कहीं ना कहीं जो है बढ़ता चला जाता है, और जब कहीं जाके 9th-10th में जब वो फेल होता है तो उसकी अवसाद की स्थिति, वहां तनाव की स्थिति पैदा होने लगती है,
1: क्योंकि बच्चे ने अभी तक
0: फेल होना सीखा नहीं। तो ये चीज जो है ये एक कमी है, इसको जो है हमको अपने उसमें सिस्टम में लाना होगा कि कम से कम बच्चा फेल होना सीखे, उससे सीखे कि नहीं यदि मैंने नहीं पढ़ा है, मैं उस लायक नहीं हूं, तो कम से कम मैं उसके लिए तैयार हूं आगे के लिए। तो ये सिस्टम जो है ये जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं उसको सेटबैक्स अगर शुरुआत में ही लग जाएंगे तो आगे के लिए वो तैयार हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि शिक्षक को जो है एक होमली एटमॉस्फियर जो है स्कूल में देना भी आवश्यक होगा। पेरेंट्स चले आते हैं काम करने के लिए, बच्चा जो है घर में अकेला है, वो अपना तनाव अपना अवसाद किसी से कह नहीं पाता, पेरेंट्स घर आते हैं तो उनको अपना काम होता है, वो बच्चा अपना काम करता रहता है। तो

0: कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर एकाकी भाव या एकांत में जो है रहकर उसके अंदर अवसाद उत्पन्न होता रहता है। तो इस समय शिक्षक की भूमिका ये हो जाती है कि वो एक मेंटोर की तरह, एक मित्र की तरह उससे पूछे कि और सब ठीक है, घर में ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। तो यदि अगर बच्चा शिक्षक से एक मित्र की भांति बात कर पाएगा तो शायद जो वो अपने माता पिता से नहीं कर पाता वो जो है अपने अवसाद की स्थिति शिक्षक से कह पाएगा, तो तनाव की स्थिति वहां कम होगी। दूसरी बात, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होते हैं उन पर भी बात करना जरूरी है। तो हफ्ते में मैं समझता हूँ एक पीरियड बच्चे का साइकोलॉजिकल उसके लिए हो, ताकि वो अपने फ्री माइंड से अपने टीचर से बात कर सके, अपने अवसादों को जो है कह सके।
1: आजकल तो स्कूल्स में काउंसलर्स वगैरह भी रहने लगे,
0: काउंसलर्स रहते हैं बाकायदा, तो ये एक सिस्टम है। लेकिन अगर उनकी कक्षा का शिक्षक ही खुद काउंसलिंग करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चा कक्षा शिक्षक से ही ज्यादा घुल मिल जाता है और उसी से जो है अपनी बात कर सकता है। तो बेहतर यह है कि काउंसलर्स की बजाय यदि कक्षा शिक्षक जो है वो यदि उसकी काउंसलिंग करेंगे, या उनसे हफ्ते में एक बार एक पीरियड जो है फ्री पीरियड जो है हॉबी पीरियड का टाइप इस टाइप से, आप अपने मन की बात कहने का पीरियड जो है वो लगाया जाए, तो इससे बच्चों के अवसाद कम होंगे और बेहतर होगा कि वो अपने शिक्षक से अपनी बात कह पाएंगे। शायद हो सकता है घर की बात भी कहना हो उनको, या अपने स्कूल की बात कहना हो, या अपने मित्रों के बीच की बात कहना हो।
1: आउटडोर एक्टिविटी, मैदान में खेलना कूदना आज के बच्चों के लिए कितना जरूरी है?
0: वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे आजकल कुल मिलाकर घर में बंद हो गए हैं, कहीं टीवी है, कहीं इंटरनेट है, क्लासरूम में भी जो है उनको सारी चीजें जो है डिजिटलाइज्ड हैं, तो खेलना जो है बच्चे के लिए बिल्कुल बंद हो गया है। और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उसके लिए परम आवश्यक है। कम से कम बच्चे को दिन में अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 2 घंटे तो कम से कम उसको मिलने चाहिए कि वो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो और खेले कूदे। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, तो जब बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो निश्चित बात है कि माइंड भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत आवश्यक है और नींद भी पर्याप्त जरूरी है। डिजिटलाइजेशन के इस युग में क्या है, बच्चे मोबाइल देखते हैं, रात को देर तक जागते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है उनको स्कूल जाने के लिए, तो नींद जो है वो भी पूरी नहीं हो पा रही, तो इसके कारण मेमोरी लॉस होता है, याद नहीं रह पाता, तो ये सारी चीजें भी अवसाद की ओर ले जाती हैं। तो इन सब चीजों को भी जो है बच्चों के पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए पेरेंट्स को। कम से कम बच्चे जब घर आते हैं या पेरेंट्स जब घर आते हैं तो एटलीस्ट उनके साथ बैठकर उनकी पूरी दिनचर्या, स्कूल में क्या हुआ, आज दिन में तुमने क्या किया, इस विषय पर पेरेंट्स को भी बात करना आवश्यक है। कम से कम हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को कम से कम 1 घंटा जरूर देना चाहिए।
1: जी, पेरेंट्स को बच्चों के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, और स्कूल में भी होमली एटमॉस्फेयर देना स्कूल्स का काम है, और टीचर जो है अच्छे से काउंसलिंग करे, चूंकि टीचर्स के साथ बच्चे घुले मिले होते हैं, तो टीचर्स को भी ध्यान देना जरूरी है कि बच्चे के अंदर कोई असामान्य व्यवहार तो नहीं हो रहा है, परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, तो उसको अलग से जो है आपको ट्रीट करने की आवश्यकता है, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कौशल आधारित है, चिंतन आधारित है, मौलिक चिंतन, मौलिक सोच, मौलिक विवेक के ऊपर ज्यादा जोर देती है, समझ विकसित करने पर जोर देती है, और जब आप अपने रुचि के काम को करते हैं, पैशन के काम को करते हैं, तो उसी दिशा में यदि आप प्रोफेशन भी आप लेकर के जाते हैं, अपना करियर भी लेकर के जाते हैं, तो आप कमाल का काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये बहुत बड़ी बात है। धर्मेंद्र शर्मा साहब, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से आज हमारे जो स्कूली विद्यार्थी हैं उनके जो अभिभावक हैं उनके बीच में आपने बहुत उपयोगी, सार्थक, सागर्भित वार्ता के माध्यम से पहुंचाई, और निश्चित रूप से जो भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं धर्मेंद्र शर्मा साहब, आप स्कूल संचालक हैं, शिक्षाविद हैं, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सेवा के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप हमारे बीच आए, समय निकाला आपने, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। अभी आप सुन रहे थे, विषय था स्कूली शिक्षा में नवाचार व भविष्य की संभावनाएं। गेस्ट थे धर्मेंद्र शर्मा और भेंट करता दीपक निषाद।

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 9 अब बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। अनुप्रसारण किया जाएगा हमारे मुंबई केंद्र से। आइए कुछ पल इंतजार करते हैं।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में बंडी और बबली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजशेखर और संगीतकार कृष्णा। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। सुनते हैं बाकी गीत।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गाना। नेहा कक्कर और साथियों की आवाजें हैं।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजों में आप सुन रहे थे। बोल जयदीप साहनी ने लिखे थे, तर्ज सलीम सुलेमान ने बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जसविंदर नरूला और सोनू निगम की थी, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: चलते हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

संगीतकार रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब ये स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटे उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीत का रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं, बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। वो लीजिए, प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख नवीन श्रीवास्तव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। प्रदेश में 19 मार्च से 30 जून तक चलाए गए जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्वालियर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जल सहेजने के कार्य करवाए गए। जिले में 18,704 कार्य हुए, जिसमें लगभग 24 लाख घनमीटर जल संग्रहण क्षमता की बढ़ोतरी हुई है। ग्वालियर में 1,000 अमृत मित्र बनाए गए हैं। इस अभियान के समापन अवसर पर मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों और शासकीय सेवकों को सम्मानित किया। ग्वालियर जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन का शुभारंभ बीते दिनों जनपद पंचायत मुरार की ग्राम पंचायत उदयपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर जाटव ने किया। इस कार्यक्रम में वीर नारी स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से निर्मित पर्यावरण अनुकूल मालाओं से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अभिनव पहल ने पर्यावरण संरक्षण और महिला स्वसहायता समूहों की सृजनात्मक भूमिका का प्रभावी संदेश दिया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बीते दिनों मध्य प्रदेश के भ्रमण के उपरांत 22 जून को ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं महापौर शोभा सिकरवार ने विदाई दी। पल्स पोलियो अभियान के तहत ग्वालियर जिले में बनाए गए 2,356 बूथों पर जन्म से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद पिलाकर पोलियो रक्षा कवच पहनाया गया। जिले के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। पल्स पोलियो अभियान के तहत घर घर जाकर भी पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्नत कृषि पर संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों के जैविक व प्राकृतिक खेती पर अनुभव सुने, इसके साथ ही उनसे सीधा संवाद किया। डॉक्टर यादव ने ग्वालियर में मूर्त रूप लेने जा रही अत्याधुनिक हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भी रिमोट के जरिए भूमि पूजन किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर के खुरैरी व ग्राम जहांगीरपुर में इस हाईटेक नर्सरी के प्रथम चरण का कार्य होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में समन्वित कृषि प्रणाली इकाई एवं बहुस्तरीय कृषि पद्धति इकाई का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आम का पौधा रोपा। उन्होंने इस अवसर पर वृहद स्तर पर पौधे रोपने और उनकी सुरक्षा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सड़क सुरक्षा के उपहार स्वरूप जिले के लगभग 50 लोगों को हेलमेट भी वितरित किए। ग्वालियर जिले में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। शक्ति दीदी नवाचार के तहत जरूरतमंद महिलाएं पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर का मोर्चा संभालकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस माह भी कई जरूरतमंद महिलाएं शक्ति दीदी बनी हैं। जिले में अब तक 123 जरूरतमंद महिलाओं को शक्ति दीदी नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित प्रदेशव्यापी विशेष साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के अंतर्गत बीते दिनों ग्वालियर पुलिस द्वारा रोटरी क्लब ग्वालियर और भारत विकास परिषद शाखा ऋषि गालव के सहयोग से विशाल साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सुरक्षित डिजिटल समाज बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजावल सिंह जग्गा द्वारा जिला खेल परिसर कंपू से हरी झंडी दिखाकर किया गया। बीते दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत देश भर में 200 स्थानों पर हुए कार्यक्रमों के साथ ग्वालियर में भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम से इस योजना के तहत देश भर के लाभार्थियों के खातों में 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर से जुड़े कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के खातों में पहुंची लगभग 4 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है। महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की 4 बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने शानदार प्रदर्शन से मध्य प्रदेश और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। हाल ही में जापान में आयोजित हुए महिला अंडर-18 हॉकी एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्वालियर की 4 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों नौशीन नाज, नम्मी गीताश्री, स्नेहा दावड़े और महक परिहार का कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। ग्वालियर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप ग्वालियर जिले की चिट्ठी सुन रहे थे। इसका अनुप्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से किया गया। 10:05 हुए हैं। आइए सुने शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम राग रागिनी। सबसे पहले सुनते हैं मोहन वीणा पर पंडित विश्व मोहन भट्ट से राग अहीर भैरव।

0: वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: आइए अब सुनते हैं हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी पर राग देसी तोड़ी।

अभी आप हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी पर राग देसी तोड़ी सुन रहे थे। इसके साथ ही राग रागनी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। 10:30 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम आपकी पसंद का। इस प्रोग्राम में आज आपके साथ हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत फिल्म नाराज से है। कुमार सानू ने इसको गाया है, कतील शिफाई ने लिखा है गीत को और अनु मलिक ने संगीत तैयार किया इस गीत के लिए, जिसको सुनना चाहा है आपने।

श्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज, विशाल। ये अनुरोध है माल टेकड़ी अमरावती से प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे, श्रद्धा ढेकरे का। चांदनी चौक गंडई पडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और रौनक सेन। आइए सुनिए आप सबकी पसंद पर ये गीत।

फूल और कांटे। इस फिल्म से है अगला गीत। अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर हैं। समीर ने गीत को लिखा, नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया और हमारे इन तमाम श्रोताओं ने अनुरोध हम तक पहुंचाया। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रगेश सिंघई, प्रतेश और पूरा सिंघई परिवार। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू।

प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर समीर के बोल नदीम श्रवण के संगीत में। इस गीत को आवाज अलका याग्निक ने दी है। राजा हिंदुस्तानी फिल्म से है ये गाना, जिसको हमारे इन श्रोताओं ने सुनना चाहा है। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। ग्राम भोईना पार बालोत से देव नारायण साहू, योगिता साहू, गीतिका, चंचल रानी साहू और उमाबाई साहू। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और सुनील कुमार।

ये गीत है फिल्म आशिकी से। अनुराधा पूर्णवाल और कुमार सानू की आवाज है, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है। गीत को सुनना चाहते हैं वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदुरकर तेजस्विनी चौहान, अंकिता अनिकेत चौहान, सदर बाजार सागर से अनुरोध फराज मकरानी, समीर मकरानी, शबिनूर मकरानी, साबरीन रुबीना और तबस्सुम मकरानी, साथ में इन्होंने रेहान मकरानी लिखा है। नेहरू चौक पैठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम जाधव, सुभाष, चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। आइए सुने ये गीत।

अगले गीत में अनुराधा पूर्णवाल का साथ दिया है पंकज उदास ने। दयावान फिल्म से है ये गाना, जिसे अजीज कैसी ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया है। अनुरोध करता है कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश और जीविका दले। पुनावले पुणे से ये अनुरोध आया, अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा और उनके परिवार के तमाम लोगों का। हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े। आइए आप सबकी फरमाइश पूरी करें, आपको सुनवाएं ये गीत फिल्म दयावान से।

प्रोग्राम के आखिर में आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म खिलाड़ी से ये गाना, जिसको अलका याग्निक और अभिजीत ने स्वर दिए हैं। अनवर सागर की ये रचना है, जतिन ललित का संगीत है इस गीत के लिए। सुनना चाहा है रामगंज खड्डवा।

मध्य प्रदेश थे विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू रानू और ईशु बाबा। गायत्री कॉलोनी रहली से ये अनुरोध है हेमराज ठाकुर, राकेश श्रीवास्तव, नवल किशोर नामदेव, राघवेन सोनी, नरेंद्र सोनी, जीतू नामदेव, छोटू नामदेव, उमा सराफ और राम जैन। आइए सुने ये गीत।

अभी श्रोता आपकी पसंद कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। सुबह के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
2: जी,
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
2: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
3: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
3: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
3: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
4: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
4: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
4: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
4: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
4: मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
5: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
4: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
5: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
6: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
5: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
5: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
4: सॉइल इरोजन,
5: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
5: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: हाँ, जी मैम।
6: यस मैम।
5: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
6: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
5: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
6: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
5: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
5: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
5: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
5: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
4: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
4: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम। साथियों, अभी आपने सुना ये

कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की

0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
1: जंगल के साथी।
3: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ को सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
4: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है, लो सुनो।

0: सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश,
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।

0: कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
0: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
2: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
2: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
2: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
2: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी सागर है।
8: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770443

ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आइए इंतजार करते हैं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश, तलत अजीज की आवाज, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत समीर का, एल्बम खूबसूरत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुस जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने। पहला जो गीत है ये अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी लिखा के बोल।

लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई।

फैलन से लोम चमन को चला वीरन से क्षमा है कब से जुदा परवन से अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से दिल से मिलेगा दीवाना कोई दिल का आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का मट्टी में छेड़ के तराना कोई दिल का आज लुटाए

मुखड़े से जुल्फ जरा सर कंगा, मुखड़े से जुल्फ जरा सर कंगा, सुलझेगा प्यार उलझ मैं जाऊंगा, पाके दिहाई बहुत पछताऊंगा, ऐसा सुकून कहाँ फिर पाऊंगा, और नहीं है ठिकाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के सराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए हुए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आज की यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह है खजांची फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में देख कबीरा रोया इस फिल्म का गाना। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम हीर रांझा। और अब आपको सुनवाते हैं हंसते जख्म, इस फिल्म का गाना, एक बार फिर आवाज लता मंगेशकर की, बोल कैफी आजमी के।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। लैला मजनू फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में सहे लुधियानवी के बोल हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदालत फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में गीतकार राजेंद्र कृष्णा।

संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म का नाम भाई भाई।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरीला सफर इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो इबारत हमने पोस्ट की है वो सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि संगीत की अनेक विधाएं होती है। संगीत गजल के रूप में भी है और कव्वाली के रूप में भी। कई गीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं। जब पसंद की बात हो तो सबके अपने ख्याल हैं। संगीत की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि उसके बिना दिल नहीं लगता। संगीत के प्रति दिल में ऐसे अरमान, ऐसी दीवानगी कि सारी सारी रात उनकी याद सताती है। जब संगीत की शैली मधुर हो और कोमल हो, संयोजन सरल हो और भारतीय वाद्य यंत्रों का विशिष्ट प्रयोग हो तो गीत भावपूर्ण रूप में निकलता है। संगीत की कहां कोई सीमाएं होती है, पर खासियत इस बात में है कि उनकी मौलिकता और मधुरता बनी रहे। संगीत के दीवानों की निगाहों को न कारवां की तलाश होती है, ना वे उस बरसात की रात को जिंदगी भर भूल पाते हैं जब उन्होंने गरज कर सावन आते देखा। पसंदीदा संगीत कानों में पड़ते ही ख्याल आता है जो बात तुझ में है किसी और में नहीं। बताइए कौन से हैं आज के गीत। ये आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने इबारत पोस्ट की, आप लोगों ने इसे पढ़ा और बहुत सारी बातें आपने लिख करके भेजी संगीत के बारे में। जी हाँ, आज दो महान संगीतकारों की याद का दिन है, संगीतकार मदन मोहन और संगीतकार रोशन। मदन मोहन के गीत तो हमने आपको यादों की महफिल इस कार्यक्रम में सुनवाए हैं। आज इस कार्यक्रम में यानी सुरीला सफर कार्यक्रम में संगीतकार रोशन के संगीत को हम याद करेंगे। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों के सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों के झरोखों से जीवंत हो उठती है। संगीत की कोई सरहद नहीं होती, यह तो आत्मा की वो बेबाक आवाज है जो हर दीवाने के दिल को सीधे छूकर हौले से कह जाती है कि जो बात इस सुरमई एहसास में है वो कायनात की किसी और चीज में नहीं। एक साथी की बात है कि कोलाहल से भरे जीवन में संगीत से बेहतर शायद ही कोई और विकल्प हो। संगीत सिर्फ सात सुरों में बंधा नहीं होता। संगीत में दुखी से दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य होती है। किसी के लिए संगीत का मतलब स्वयं को सुकून देना होता है और कोई अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति संगीत द्वारा करता है। प्रेमियों के लिए तो संगीत प्रेम की भाषा के व्याकरण जैसा है। अच्छा संगीत बेचैनी कम करता है। घंटों काम कर रहे व्यक्ति का कुछ देर अच्छा संगीत सुनना उसकी रचनात्मक कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। बहुत सारी बातें हैं संगीत के बारे में कहने के लिए। आप रोशन के संगीत के बारे में भी हमें लिख सकते हैं। चलिए पहला गाना सुनते हैं कार्यक्रम का, वल्लाह क्या बात है, इस फिल्म का गाना। जी हाँ, कुछ संगीतकार या बल्कि संगीत के बारे में ही हम कह सकते हैं, जब अच्छा संगीत हम सुनते हैं तो मन से यही बात तो निकलती है, वल्ला क्या बात है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ ये गाना है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं।

शम्मी कपूर और बीना रॉय पर फिल्माया गया ये गाना, क्या बात है। आप चाहे कितने ही परेशान हो, काम का कितना भी बोझ हो, या किसी और बात का मन में कोई उदासी हो, कोई टेंशन हो, कुछ इस तरह के गाने जब हम सुन लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस बात से परेशान थे। यही तो संगीत का जादू होता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि सुरों की अनमोल साधना, लाइव ऑर्केस्ट्रा का वो सुनहरा दौर, आज जहां कंप्यूटर से संगीत बनता है वहीं पुराने दौर का फिल्मी संगीत एक अद्भुत साधना था। 1950 से 80 के दशक में एक एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में 60 से 150 असली वाद्य यंत्र, वादक और गायक एक साथ लाइव बैठते थे। वहां कोई रीटेक या एडिटिंग की गुंजाइश नहीं होती थी। अगर आखिर सेकेंड पर भी एक वायलिन गलत बजा तो पूरा गाना शुरू से रिकॉर्ड करना पड़ता था। जब इतने सारे ओरिजिनल वाद्य एक साथ गूंजते थे तो संगीत में एक जीवंत इंसानी रूह समा जाती थी। यही कारण है कि विविध भारती पर बजने वाले ये सदाबहार तराने आज भी सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं। एक साथी की ये बात है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों में समा जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आरती फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ें। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और ये गाना प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं संगीत के बारे में कि कोई ऐसी आप कोई घटना अगर आपको याद आ रही हो जब आप बहुत परेशान थे और आपको लग रहा था कि ये समय, ये परिस्थितियाँ कैसे कटेंगी, कैसे बदलेंगी, क्या किया जाएगा, लेकिन कोई गुनगुना रहा था एक मधुर संगीत या रेडियो पर कोई ऐसा मधुर गीत बज रहा था और आप भूल गए कि आपको क्या करना है या किस वजह से आप परेशान हैं। ऐसी कोई परिस्थिति आपको याद आती है तो वो आप हमें बता सकते हैं, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जब अनायास ही आपके मुंह से एक अच्छा सा कोई गीत आप गुनगुनाने लगते हैं या उस गीत के शब्द आपके मुंह से निकल पड़ते हैं। इस बात का जिक्र आप हमसे कर सकते हैं।

संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी गजल में अपना अक्स मिल जाता है, कभी किसी धुन में बचपन, और कभी कोई पुराना गीत बरसों पुरानी याद को फिर से मुस्कुरा देता है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिख दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के लिए माँ की लोरी और देवी देवताओं के लिए भजन और शादी विवाह जैसे अवसर पर संगीत संध्या में हम गीत संगीत के माध्यम से इन अवसर को और भी रंगीन बनाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत कला का विशुद्ध तय रूप है, इसलिए वह सौंदर्य को सबसे उच्चतम रूप में

क्या कहना, ऐसे गीत जब हम सुनते हैं तो उलझा हुआ मन भी सुलझ जाता है अनायासी, इसका हमें आभास भी नहीं होता और ऐसा हो जाता है। एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे पुराने गाने इतने मधुर लगते हैं और संगीत इतना मीठा कि पूछो मत, मैं ऐसी खो जाती हूँ कि आगे पीछे की मुझे कोई खबर ही नहीं रहती। हाँ, संगीत के प्रति दीवानगी तो होती है, लेकिन ऐसी भी दीवानगी नहीं कि कुछ खबर ना हो, उसका भी आप ध्यान रखिए। एक साथी हमारी लिख रही है कि उम्र छोटी थी, शादी करके दूर चली आई, सारा भरा पूरा संयुक्त परिवार साथ रहता था, पर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। उस पर मेरा जन्मदिन पड़ा और मुझे किसी ने भी विश नहीं किया, मैं तो बहुत दुखी हुई और चुपचाप रोती रही। उस समय तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही बड़ा गम मिला है मुझे, लेकिन रेडियो पर गाना बज रहा था समझौता गमों से कर लो, और तब मन को चैन आया। एक साथी की ये बात कि जब भी परेशानी होती तो भगवान के मंदिर में जो भजन गा रहे होते हैं या भजन बज रहे होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, वहीं रुककर हमारा भी भजन गाने का मन बहुत करता है। और एक साथी लिखते हैं कि हमारे जीवन में संगीत हर क्षण व्याप्त है, यहाँ तक कि हम रोते भी हैं तो सुरों में रोते हैं और गम हमसे दूर भाग जाता है। एक साथी की ये बात की है कि हमारी कॉलोनी में एक बांसुरी वाले भैया बांसुरी बेचने निकलते हैं, उनकी बांसुरी सुनकर हम तो अपना काम वाम छोड़कर बस सुनने लगते हैं जब तक वो दूर नहीं चले जाते। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बचपन में माँ लोरी सुनाती है, स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, कविताएं ऊंचे स्वर में गाकर आनंद लेते हैं, जवानी में हम प्यार भरे गीत सुनते हैं, रेडियो के साथ गाते हैं, फिर रियाज न होने के कारण आवाज में संगीत नहीं रहता, मराठी

मराठी में इसे कंठ फूटने कहते हैं, मतलब आवाज में वो सुर वो लय तान नहीं होती, फिर भी हम मन ही मन कुछ गाकर अपना दिल बहलाते हैं, बुढ़ापे में भी कुछ यादगार गीत गाते हैं, भजन करते हैं, इस तरह संगीत हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। और अब बावरे नैन इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मुकेश की आवाज़ें हैं इसमें, और संगीत आपको पता ही है रोशन का, राज कपूर और विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया ये गाना है। लिखा किसने है ये आप हमें बताइए।

बावरे नैन फिल्म का ये गीत आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ ये गाना। एक साथी ने लिखा है कि मंजू जी, घर में तो प्रायः ऐसा होता ही रहता है कि कभी किसी बात पर किसी से बहस छिड़ गई या छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई यूं ही किसी छोटी सी बात पर हो जाता है, तो फिर उस स्थान से हटकर दूसरे कमरे में जाकर शांति से बैठकर गीत सुनने लगते हैं। रेडियो पर विविध भारती तो नित्य प्रतिदिन बजता ही रहता है, चाहे वो बजने वाला गीत कैसे भी मूड का हो, पर अपने बिगड़े हुए मूड को बदल ही देता। यही तो होता है संगीत का जादू। एक साथी की ये बात है कि संगीत मन की दवा है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं को संतुलित करने और मन को शांति देने का माध्यम भी है। जब मन उदास होता है, जब मधुर संगीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है और तनाव को कम कर देता है। संगीत भाषा और सीमाओं से परे जाकर सीधे हृदय से संवाद करता है। भजन, गजल, लोकगीत या शास्त्रीय संगीत, हर स्वर में मन को सुकून देने की अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि संगीत को आत्मा की भाषा और मन की सबसे प्रभावी दवा कहा जाता है। एक साथी ये बात लिखते हैं कि मानव ने रचाया संगीत तो ठीक है, पर कभी सोचा है कुदरत के संगीत के बारे में? भंवरों की पंख का गुंजन, हवा से लहराते पत्तों का गुंजन, अरे सागर की गहरों का लहरों का संगीत, वो भी तो याद कीजिए। एक साथी की ये बात कि कई बार संगीत मन को असीम सुकून दे जाता है। मेरे पापा जो आज डिमेंशिया से ग्रस्त है, उन्हें पुराने हिंदी गीत बेहद पसंद है। जब भी वे रेडियो या टीवी पर ये गीत सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक अनोखी खुशी आ जाती है। उनका सबसे पसंदीदा गाना है जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ये बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि मंजू जी, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही विविध भारती पर संगीत सुनते हुए गुजार दिया है। कॉलेज के समय रेडियो पर और नौकरी में कंप्यूटर, और रिटायरमेंट के बाद भी वापस रेडियो पर। कुछ भी हो, संगीत जीवन की एक ऐसी धारा है जिसको मैं छोड़कर नहीं रह सकता। एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बात उन दिनों की है जब मेरी स्वर्गीय माँ बहुत बीमार थी और बिस्तर पर थी। मैं उनके पास बैठा रहता था जब विविध भारती को सुना करते थे। उन पर चलने वाला मधुर संगीत जो माँ की पहली पसंद थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके चेहरे का वह सुकून देखकर मैं भी कुछ राहत महसूस करता था। सच, संगीत बीमार व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। चलिए इस मुस्कान को थोड़ा और हम बड़ा करते हैं। मल्हार फिल्म का गाना बड़े अरमानों से, ये गाना लता जी और मुकेश जी की आवाजें हैं इसमें। रोशन का संगीत है ये तो आपको पता ही है, और गीतकार कौन है ये आपको बताना है।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना, इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि गरजते बरसते जब सावन आता है तब बारिश की बूंदें भी एक ताल में बरसती है, जिससे एक अनोखा संगीत पैदा होता है जो प्रकृति हमारे लिए लेकर आती है। ये संगीत हमारे मन के साथ साथ धरती की प्यास भी बुझाता है। इसके प्रभाव से धरती झूमते गाते हुए अपना श्रृंगार करते हुए हरी भरी हो जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे संगीत की रुचि तब से हुई जब हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में एक बगीचे में बड़ा सा रेडियो लगता था। उस पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में बिना का गीतमाला चल रही थी, तब हम वहां सुनने जाया करते थे और यहीं से संगीत सुनने की आदत हमें लग गई। और एक साथी की ये बात कि खाना न मिले चलेगा पर गीत जरूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गीतों के साथ साथ विविध भारती के साथ काम करने में भी उत्साह बना रहता है। संगीत के बिना तो हमारे हाथ चलते ही नहीं है, और संगीत हमारा सबसे प्यारा सा साथी है जो बस हमें खुशी ही देता है, हमसे कुछ नहीं मांगता। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि संगीत तो ऐसी विद्या है जो हंसा देती है, रुला भी देती है, यहाँ तक जख्मों को भर भी देती है। 2017 की बात है जब मेरा बचपन का दोस्त शांति यात्रा में चला गया। उसके साथ हमारा अच्छा घरूंबा है। उसके जाने के बाद मैं यूं ही बैठा हुआ था, तभी एक गाना रेडियो पर बजा, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जिसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। आज भी उनकी याद, उनकी दोनों बच्चियां मुझसे दूर नहीं है और वही प्रेम है जो बचपन में था। और एक साथी ने ये बात लिखी कि बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट कर चुका था। सगाई और शादी से पहले की बात है। मुझे निर्णय लेना था कि कौन सा करियर चुनूं, कंफ्यूज था। उस दिन का समय था, मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती मुंबई पर गाने बज रहे थे, तभी गाइड फिल्म का गीत बजा, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गीत सुनकर मेरे में उमंग सी जागी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। एक साथी की, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने मुझे बरसात की रात और ताजमहल फिल्म के गानों की कैसेट ला के दी, तो मैं साथ ले आई और बहुत सुनती थी, और आज भी वो गाने मैंने संभाल कर रखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ताजमहल फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, साहिल लुधियानवी के बोल।

संगीत एक अंतहीन समंदर है जो कभी लोकगीतों की मिट्टी की खुशबू में महकता है तो कभी सूफी कलामों की रूहानी तान में गूंजता है। हर दिल की धड़कन का अपना एक सुर होता है और यही वजह है कि उदास शामों से लेकर जश्न की रातों तक संगीत हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। दोनों का ये जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसानी जज्बात दीवानगी की हदें पार कर जाते हैं, चैन खो जाता है और बस सुरों के साए में सुकून मिलता है। जब किसी रचना में बांसुरी की सुरीली गूंज और सितार की झनकार गुली हो और उसके बोल सीधे रूह को छूते हो तो वो संगीत सदाबहार बन जाता है। ये एक बात हमारे साथी ने लिखी है और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत प्रेमी के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो सांस की तरह होता है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब एक राग समझ लेता है। खुशी में सुर ताल नचाते भी हैं और दर्द में वही सुर कंधा बन जाते हैं। नींद न आए तो लोरी बन जाता है और टूट जाए तो दिल को मरहम का भी काम करता है। संगीत प्रेमी के लिए हर सुबह एक नया आलाप और हर रात एक अधूरी बंदिश। वो भीड़ में अकेला होकर भी संगीत के साथ कभी अकेला नहीं पड़ता। शहर में हो या खेत खलिहान में, काम के बीच में हो या फुर्सत के पलों में, कहीं ना कहीं एक तान उसके भीतर बसती रहती है। किसी अपने की याद आए तो पुराना गाना जख्म कुरेद देता है और वही गाना अगले पल जीने की वजह भी बन जाता है। हार के बाद हौसला चाहिए तो संगीत हौसला बनता है और जीत के बाद जश्न चाहिए तो संगीत जश्न बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें आपने लिखी है। और चलिए इसी के साथ एक और खूबसूरत गाना नौबहार, इस फिल्म से लता जी की आवाज़।

संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरत को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने यह बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखी थे, रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं बरसात की रात।

ये सुनते हुए हमारे एक साथी ने थोड़ा जोर देकर इस बात को कहा है कि ये कव्वाली पूरी बजने दीजिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान करके। आप इतने अधिकार के साथ ये बात बोलते हैं, आपका प्यार है विविध भारती के प्रति, इसके लिए आप ऐसा कहते हैं। हमने आपको पूरी ये कव्वाली सुनवा दी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं खाना पकाते समय संगीत सुनती हूँ तब भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, और कब भोजन तैयार हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, ऐसे में संगीत एक ऐसे दोस्त की तरह आकर हाथ थाम लेता है, जब बिना कुछ पूछे बिना कोई निर्णय लिए बस साथ निभाता है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना भी चाहती हूं, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज्यादा अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद गाना सुनने का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विराम देते हुए एक गाना हम सुन लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़।

साथी ने ये बात लिखी है कि ये बताना चाहूंगा कि हम सभी विविध भारती मुंबई के श्रोता बहुत ही खुशनसीब हैं कि संगीत के अनेक विधाओं जैसे कि गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और तो और युवाओं के लिए भी नए गीत संगीत के रस का आनंद वर्षों से रोजाना सुबह सवेरे से देर रात तक रेडियो के माध्यम से कर्णप्रिय संगीत का रसपान कर रहे हैं। महान संगीतकार रोशन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए, दिल ही तो है इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज

दिल ही तो है इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है, आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की आवाज़ है, सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक साथी ने ये बात और लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म के गाने की ये झलक।

नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई, मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज के बोल और एक शानदार संगीत रोशन साहब का। आज हमने उनको याद किया, रोशन के संगीत को हमने याद किया और आपके बहुत सारी बातें जो आपने लिख करके भेजी उन्हें हमने पढ़ने की कोशिश की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रोजा से, आवाज है मिनी मिनी की।

यार रहमान का संगीत पीके मिश्रा के लिखे बोल मिनी मिनी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म रोजा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है खामोशी द म्यूजिकल।

0: जतिन ललित का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। भोपाल के वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि समान नागरिक संहिता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और 18 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में इसका बिल लाया जाएगा।
1: तो समान नागरिक संहिता UCC के ऊपर जो दल गठित किया गया था, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। मुख्यमंत्री जी तरफ संकल्प है कि यह बिल इस विधानसभा के अंदर लाया जाए और मध्य प्रदेश में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस हेतु कि इस बार की अगली कैबिनेट 18 जुलाई को भोपाल जिले में जगदीशपुर के अंदर विशेष कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है।
0: कैबिनेट ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी बधाई दी, जिसमें प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ भी शामिल हैं। एमपी टेक ग्रोथ के तहत 40,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिससे 34,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में 28,000 करोड़ रुपए की लागत से AI डेटा सेंटर भी स्थापित होगा। कैबिनेट ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के खातों को डिजिटल बनाने के लिए दृष्टि पोर्टल का भी शुभारंभ किया।

0: मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित चार दिवसीय भारत टेक्स 2026 में शामिल हो रहे हैं। यहां वे देश विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों से संवाद कर प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाशेंगे। इस दौरान राज्य में टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवेयर क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने की पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री कई कंपनियों के साथ एकल बैठकें भी करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। भूजल पुनर्भरण के लिए भी बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि 12,500 एकड़ में हरित क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल में आज एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आंचलिक विज्ञान केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। ये दीर्घा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इसमें ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान और गगनयान तक की उपलब्धियां भी यहां प्रदर्शित होंगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में जुलाई महीने में पहली बार बारिश सामान्य से कम दर्ज हुई है। अब तक प्रदेश में करीब 9.5 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% कम है। पिछले 5 दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में तेज धूप रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने पर प्रदेश में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। बात खेल की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल लॉर्ड्स में इतिहास रच दिया। भारत ने एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। ये लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में पहला महिला टेस्ट मैच था। इंग्लैंड को 457 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम 186 रन पर आउट हो गई। ये भारत की पिछले 11 टेस्ट मैचों में 7वीं जीत है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने टीम को बधाई दी है। कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी टीम को शुभकामनाएं दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिले भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत गुना, शिवपुरी और रायसेन जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 5 साल तक के सभी छोटे बच्चों को घर घर जाकर आयरन, सीरम, सिरप, जिंक और ORS के घोल वितरित किए जाएंगे। नर्मदापुरम जिले में मेरा युवा भारत के तहत जिला पेंशन कार्यालय में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर स्वयं सेवकों को पेंशन विभाग की कार्यप्रणाली, ऑनलाइन फाइल संचालन और डिजिटल प्रशासन की जानकारी दी गई। और बुरहानपुर जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार। समाचार के साथ मैं कनकलता।
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
2: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
1: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि MT अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। MT मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है।

भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत

0: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ुल्फ़ाग़री ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र

0: को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, रजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

0: करने
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है पूजा के फूल, इस फिल्म से।

आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं जेलर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: ये है नौ निहाल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दस्तक फिल्म से मदन मोहन की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: Haley. सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: कैसी हो चंचल?
1: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
0: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें यही हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
0: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
1: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं, और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है,

0: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
1: हाँ।
0: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं।
1: हाँ।
0: इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में लगे, और वहां आप ही संपर्क नहीं है। जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है।
0: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
1: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बात सेहत की हुई है, हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
0: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
0: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा जहाँ हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं और ये हैं कि उनका इंतजार होता है हमें।
1: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
0: मुंह में राम, बगल में छुरी।
1: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा। हाँ। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें। पहला गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तो मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे बहुत प्यार करते हैं बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती ये जो दुनिया है इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब पहले जब हमें अगर हम दूर दराज की बातें करें अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे या एसटीडी पर जाकर हम जो है वहाँ पर बात किया करते
1: घंटों लंबी लाइन में लगा करते
0: है ना, लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अब ये काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है और मिलकर बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तब परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
0: अपना मोबाइल चेक करते हैं किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है
1: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगने लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भुलाते हैं ना मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता है अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए।
1: बिल्कुल
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भुलाई है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कांटेक्ट जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल शारीरिक रूप से हम वहां मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं
0: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर एक गीत सुन ले।
0: चलिए

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
7: हाँ, लेकिन चंचल, हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
6: अच्छा?
7: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
6: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट की है, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
7: ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं। हाँ। जो उन्होंने काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
6: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, जे वो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है

का मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद

0: डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहां। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज। और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है
0: और सही लिखी है ना। वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट है।
1: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
1: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे। क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वॉयलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा भी आपने कहा, हम सब बैठकर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है, इस पर हमें बकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
1: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान तो चला गया है, सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था और इस गीत ने सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे एप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज एप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब

0: वे आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है यानी कि दावा आपको लेना है तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल, और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: मंदाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी, और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना, वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती है खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो चंचल, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया, और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में, उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं। कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं, और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी, हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके जो मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
0: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए, हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इस अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहां भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
0: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ, अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा, आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
1: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना, वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ है कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
1: और ये जो अभी मौसम चल रहा है, इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है,
0: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारी श्रोता लिखती है कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खानपान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें। और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
1: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई इन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं, जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बात ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
1: एक और बात कि तली हुई चीजें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताजा तेल
0: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहरी खाना पसंद करती है, और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है, हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों की बजाय ताजे और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी अच्छी

0: सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फ़ायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है, घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है। तो ये पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें हम घर में,
1: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
0: और बच्चे इन चीज़ों से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियाँ बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना वहाँ बिल्कुल जो बची कुची सब्जियाँ उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती हैं, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताज़ी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रहे थे कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो उपयोग कर लिए जाए, और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
0: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है,
1: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी,
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये एक ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण इन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। हाँ। पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सभी जानते हैं, मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है, और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना, हम कॉपी
1: उदाहरण देकर समझाइए,
0: उदाहरण देके समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुँचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता है वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे।
1: हाँ, यानी बिल्कुल
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुलाया यार प्लीज। रीसेट की यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी,
2: दे लाइक्ड इट, दे शॉर्टलिस्टेड, कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई एंड आई जॉइंड द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
2: जाके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी, और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम

0: क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था.
1: हाँ,
0: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा.
1: ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने का.
0: हाँ, उनका एक अलग तरीका है.
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था.
1: अच्छा.
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट करा था तो मेरा कम एक्सपोजर था. वेयरएज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं. अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन रिजलानी है
1: जी.
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी. ये तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे. बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस, हमें कम इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं दिया. उनके लिए सब सेम थे.
1: सब सेम.
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है. वो कन्वे करते थे शॉट के पहले.
1: अच्छा.
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे. मतलब एक ही सीन हमारा, हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार.
1: जी, जी.
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर, आपको क्या सही लग रहा है. और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी. मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की
1: जी,
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस. तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ
1: जी.
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है.
1: अच्छा.
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक. वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है. ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी. स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी.
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था. एवरीथिंग इज एट स्टेक. अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं.
1: अच्छा.
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए. तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड. तो मैंने वो बोल के देखा, ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक.
1: अच्छा.
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया. मैंने बोला ये करता हूं. तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, बोले कि नहीं नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे. मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना. नहीं नहीं यार, वो गुस्सा हो जाएंगे. लाइक ठीक है छोड़ यार. मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए. मैंने बोला सर एक पॉइंट है. बोले हाँ बोलो. मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है, अगर आपको सही लगता है. उन्होंने बोल के देखा. एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है.
1: जी जी.
0: इज अ कैप्टन ऑफ द शिप.
1: बिल्कुल.
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार. बड़ी बड़ी अवधि. बोला हाँ गुड गुड. Do it. And it is there in the film.
1: Yes, yes, yes.
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए. आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो वैसी रहे. आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है.
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है.
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है.
1: जी जी जी.
0: तो अच्छा, मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे. मैं कुछ उसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूँ.
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी है.
0: बहुत जरूरी है.
1: हाँ.
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ.
1: जी.
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलते हैं कि महात्मा जी ये जो आपका प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी.
1: अच्छा.
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है. तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी. और वो जाने को बोलते हैं.
1: अच्छा.
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी. वो नहीं बोलते हैं. और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती करते है कि, तो उसमें मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए.
1: हाँ.
0: थोड़ा सा इमोशनल है
1: वो महात्मा बोल रहा है.
0: हाँ. अब जो तो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली अरे करना यार काइंड ऑफ तो, लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा. अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला. उसमें नहीं नहीं प्रोटोकॉल ये हो जाएगा वो. हाँ. थोड़ी मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है. ठीक.
1: हाँ.
0: है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं है, तो फिक्शन है. और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: तो बापू पूरा नेशन उनको बापू बोलता था. व्हाई नॉट. उसने नहीं बोल दिया. मैंने राज जी को बोला. सेट पे आए वो जब सीन करना था. हाँ चलो चलो. मैंने बोला राज जी ये. हाँ बोलो. सर ये ऐसा ऐसा है बापू. कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा. हाँ बहुत बढ़िया. ही लाइक्ड इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए, वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। So this is what how it happens.
1: क्या बात है।
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा,
1: हाँ, हाँ.
0: कि मैं जैसी वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू, वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
1: अच्छा।
0: तो विक्रम मराठी का काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा नाम है
0: शोज करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी, हमने साथ में पहली
1: अच्छा,
0: फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: तो उसने कंटिन्यू किया, उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर, और वापस आया तो चार साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया
1: जी।
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त थे। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना
1: जी।
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर, उतने व्यूअर्स नहीं मिले, बट
1: हाँ।
0: आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए, आपको 4.5 घंटे का होगा। बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए
1: जी
0: कि कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
1: अच्छा।
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
1: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ, और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था, तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता, और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं
0: जी।

दो लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह जाती जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में

0: भी काम किया है
1: जी।
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, प्रगति की मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ
0: जी।
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय
0: जी जी,
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनालिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा,
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा,
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके,
1: अगर कोई चीज एक शब्द बोला है उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो जी, एक छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर दे के बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो दे ही विल वर्क ऑन यू। एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को दिया जाए। तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया,
1: ज्यादा जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं उनसे सीखा। और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी सबकी एक अलग अलग वो होती है।
0: जी, जी।
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है, वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग।
0: जी, हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट,
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूं
0: जी,
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल,
1: जो कि टेलीविजन में फिल्म्स में पॉसिबल नहीं
0: है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं,
1: नहीं आएगा। सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ,
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: लाइव परफॉर्मेंस,
1: वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम्प दे जाती है।
0: जी जी जी, और उसका जो भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त
1: तुरंत
0: आना,
1: तुरंत, यू फील सो गुड,
0: हाँ हाँ,
1: कि जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया
0: जी,
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया
0: जी।
1: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है,
0: हाँ।
1: और मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली, और आप 15 दिन महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे 6-6, 10-10, 15-15 लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में, महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है, मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल,
1: तो दैट मेक्स अ सेंस, और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर
0: जी जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेट आउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
1: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान,
0: हाँ,
1: मैं जब नागपुर

0: में था
1: जी,
0: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है, तो आप कहीं जा सकते थे। तो वहां मैं रामटेक गया, रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे अमोल खन थे
1: जी,
0: उनका एक एडवेंचर विलेज है
1: हाँ।
0: वो भी

0: तो ये कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
1: हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना।
0: हाँ,
1: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के साथ
0: जी,
1: लेकिन शायद एक फ्रेंड या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
0: जी, जी।
1: जो शायद कुछ और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, आईपीसी 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था।
0: अच्छा,
1: आईपीसी 324।
0: हुँ।
1: और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
0: जी,
1: जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है।
0: हाँ,
1: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है
0: जी जी,
1: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया, जिसका नाम है पिया की दासी।
0: ओह, क्या बात है।
1: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
0: जी,
1: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारेगामा या
0: अच्छा
1: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा, जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया
0: जी जी,
1: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
0: चलिए इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी
0: जी, आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर
1: जी,
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया।
0: अच्छा,
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई।
0: अच्छा,
1: छोटा सा किरदार था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी,
1: जब
0: जी।
1: तक जैसे मैंने एक साथ ही, मैं अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब।
0: अच्छा,
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं
0: जी।
1: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार वो

0: डॉक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं,
1: अच्छा
0: उनको अच्छा लगा।
1: हुँ.
0: और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा। ही सेड नहीं नहीं आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे में मैं घर पे बैठने वाला हूँ क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं।
1: अच्छा,
0: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं।
1: बिल्कुल,
0: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: थिंग्स हैपेंड दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माय वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है। सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स जो कि रोहित शेट्टी सर का था।
1: जी जी जी।
0: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वाज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
1: अच्छा,
0: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
1: जी, जी।
0: उनकी वो और उनकी पूरी टीम वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक। तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
1: क्या बात।
0: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
1: अच्छा,
0: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी।
1: अच्छा,
0: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वही 12-13 साल की एक रहेगी। और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी ऐसा दिखाएंगे।
1: अच्छा,
0: और कैरेक्टर अच्छा था। जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
1: जी जी,
0: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो।
1: अच्छा,
0: दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं।
1: हाँ,
0: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन, तो
1: कई शेड्स
0: हो सकते हैं
1: जी।
0: सो जितने रस वो दिखा सकता है उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे निगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है।
1: अच्छा,
0: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
1: हाँ,
0: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू स्टोरी थी।
1: जी जी,
0: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है।
1: ओह,
0: इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
1: जी,
0: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे।
1: अच्छा,
0: तो बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट एक साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में, बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का
1: जी,
0: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल।
1: अच्छा,
0: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही।
1: जी जी,
0: दैट वे।
1: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत चाहता वैसा भी नहीं हूँ कि बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो। लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं
1: जी,
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रही।
1: हाँ, मकरंद देशपांडे,
0: मकरंद जी थे उसमें,
1: वो फिल्म है,
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत है। उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
1: जी जी,
0: और ये गाना चल रहा है, और अभी बारिश आने ही वाली है।
1: हाँ,
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन। और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो।
1: हाँ,
0: और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो।
1: क्या बात है। चलिए सुनते हैं यही गीत
0: जी।

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा, तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा
0: जी।
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में।
0: अच्छा।
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, आई प्रोड्यूस इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इन्फॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
0: जी,
1: मैं एक साइड बनाता रहूँ, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ साथ हम हमारे फिल्म्स को भी फंड कर पाए।
0: अच्छा।
1: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम, जैसे मैंने आपको बताया IPC 324, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई
0: जी,
1: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे। और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर
0: जी।
1: मैंने वागले के बाद में अभी, वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है
0: जी,
1: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा किरदार।
0: और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को

0: मिल जाए।
1: तो
0: अभी वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
1: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है बिकॉज दायरे ओटीटी अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
0: जी,
1: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था।
0: अच्छा,
1: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
0: ओहो, क्या बात।
1: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर किनले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।
0: वाह,
1: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए।
0: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
1: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना ही बहुत एप्ट होगा कि हम जब जी जान से खेलते हैं,
0: जी
1: जान से लड़ते हैं
0: जी,
1: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो आपको भी मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत
1: हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं,
1: ट्रू,
0: वो भी दुर्भावनाएं जो होती है वो भी हमारी दुश्मन है,
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है
0: जी,
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी
0: जी।
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है
1: जी,
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहाँ बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से काम करना चाहिए
0: जी जी।
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है,
0: हाँ,
1: ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ।
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें
0: जी, जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जुड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा, और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है
0: जी जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं
1: जी,
0: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ।
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI, ये सब चीजें हमें पता नहीं थी।
0: हाँ।
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं
0: जी जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी। हाँ। और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूं
0: जी,
1: और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूं
0: जी जी।
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है।
0: हाँ।
1: जो कि दूर से देख के, ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
0: वाह।
1: वो भली फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब
0: जी,
1: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
0: जी जी,
1: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पर बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है, तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
0: हाँ,
1: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे।
0: हाँ,
1: ये मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता है।
0: क्या बात है
1: जी,
0: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी यहाँ पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहां से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, हाँ, उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था,
0: अच्छा,
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
0: जी।
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 male 3 females, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
0: वाह।
1: बतौर कलाकार।
0: वाह वाह।
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल। उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कशिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी
0: जी,
1: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डायरेक्टर
0: जी,
1: ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था, बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊ कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए। और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जिनके पास समय है जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो
0: जी, जी, जी।
1: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे।
0: क्या बात।
1: तो ये मेरा सबसे जरूरी है, अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं?
0: अच्छा।
1: अगर इतना डरते हैं तो

0: वो घर से निकलते क्यों है?
1: ओह क्या बात,
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग। ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने ना भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया strugglesmart.com कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो।
1: अच्छा,
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है, पॉजिटिव बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि तीन चार साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी।
1: अच्छा,
0: द डोमेन नेम इज आल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है।
1: जी जी,
0: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ, और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
1: निश्चित रूप से। और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहाँ हम कोई गाना सुनते हैं।
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी,
0: कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
1: हाँ,
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो।
1: हाँ,
0: सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी,
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
1: हाँ,
0: तो
1: आप मुख्य कलाकारों में तो है
0: बिल्कुल,
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व नहीं है।
0: तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ, हाँ।
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल
1: जी,
0: उसके बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा। शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ,
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम,
0: लगे कि विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
1: जी जी जी,
0: तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो,
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
1: क्या बात, क्या
0: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: क्या बहुत ही खूबसूरत गाना है, आइए सुनते हैं
0: जी।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा, यहाँ पे कौन नहीं आया है।
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण के लिए 10,800 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजगार सुनवाई करने पर सहमति जताई। रोजाना सुनवाई करने पर सहमति जताई। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि यह विवादित जगह के पास ही मुस्लिम पक्ष के लिए शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने साफ किया कि यह व्यवस्था फिलहाल के लिए अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भोपाल में आज एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आंचलिक विज्ञान केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। ये दीर्घा नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इसमें ब्रह्मांड और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति मीना। आप सभी के लिए लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। साथियों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रीन इंडिया मिशन की और जानेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे प्रयास प्रकृति को हरा भरा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। इसके साथ ही चर्चा करेंगे वर्कप्लेस एथिक्स और आपके अधिकारों की, जानेंगे कि कार्यस्थल पर अच्छी कार्यशैली और अपने अधिकारों की जानकारी किस तरह हमें एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। साथ ही सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्म संगीत और जानेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए बिना देर किए ट्यून इन करते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

जिस धरती ने हमें सब कुछ दिया आज उसकी रंगत फीकी पड़ रही है। कंक्रीट के इन जंगलों के बीच उसकी हरियाली घुट घुट कर मर रही है। बहुत ले चुके हम इससे, अब मिलकर इसका कर्ज चुकाना होगा। अपनी इस धरती को हमें हरा भरा बनाना होगा। साथियों, धरती हमें जीवन देती है और बदले में हमसे कुछ नहीं चाहती। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इसके संसाधनों का समझदारी से उपयोग करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य मिल सके। कल्पना कीजिए, अगर एक दिन हमें शुद्ध हवा ना मिले, नदियों का पानी सूख जाए और पेड़ों की हरियाली केवल तस्वीरों तक सिमट जाए, तब जीवन कितना कठिन हो जाएगा। इसलिए प्रकृति का संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का लक्ष्य अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जंगलों को दोबारा हरा भरा करना, वन्य जीवों व वनस्पतियों की रक्षा करना और बदलते मौसम की मार से हमारी धरती को बचाना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी है, क्योंकि जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक यह मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे अकेले के प्रयास से क्या ही फर्क पड़ेगा, पर सच तो यह है कि हर बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। घर में पानी की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, ज़रूरत ना होने पर बिजली बंद करना और अपने आसपास सफाई रखना, ये छोटे छोटे प्रयास ही मिलकर बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। अगर आज हम पर्यावरण संरक्षण को अपनी आदत बना लें तो आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरी भरी धरती मिल सकेगी। क्योंकि अक्सर कहा भी जाता है कि धरती हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। तो आइए आज मिलकर संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करेंगे और ग्रीन इंडिया मिशन को सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि जन जन का अभियान बनाएंगे। इसी के साथ अब समय है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। आइए सुनते हैं आज की शाम का अगला गीत।

दोस्तों, कभी गौर किया है हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ गुजरता है? जाहिर है हमारे वर्कप्लेस यानी दफ्तर में। और सच कहूँ तो हमारे दिन का सबसे ऊर्जावान और सबसे महत्वपूर्ण समय हम ऑफिस में ही बिताते हैं, जहाँ हम रोज कुछ नया सीखते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक अच्छा ऑफिस सिर्फ बड़ी इमारतों, बढ़िया लैपटॉप या अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनता, वो बनता है वहाँ के माहौल से और वहाँ काम करने वाले लोगों से। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि बस अपना काम पूरा करो और जिम्मेदारी खत्म। लेकिन बात सिर्फ काम की नहीं, हमारे व्यवहार की भी है। इसी को हम कहते हैं वर्क प्लेस एथिक्स। आसान शब्दों में कहें तो वक्त की पाबंदी, काम में ईमानदारी, अनुशासन और सबसे बड़ी बात, अपने साथ काम करने वालों का सम्मान। यानी एक दूसरे से मुकाबला करने के बजाय मिलकर टीम वर्क करना ही इसकी असली बुनियाद है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मिलकर जो कदम बढ़ाए तो कारवां बन जाता है, जहां इज्जत हो हर दिल में वो दफ्तर भी घर बन जाता है। मगर दोस्तों, जहां एक तरफ हमारी जिम्मेदारियां हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे अधिकार भी उतने ही ज़रूरी हैं। अक्सर हम काम के दबाव में अपने हक के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। याद रखिए, हर कर्मचारी का यह अधिकार है कि उसे एक सुरक्षित माहौल मिले। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता है कि सम्मानजनक काम हर इंसान का बुनियादी हक है। तो बस जब कर्तव्यों और अधिकारों का यह बैलेंस मिल जाता है तो ऑफिस का तनाव अपने आप कम हो जाता है और काम करने का मजा दोगुना हो जाता है। आशा है कि आप भी अपने वर्कप्लेस को ऐसा ही खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की शाम का अगला गीत।

हम दिल दे चुके सनम। आइए अब सुनते हैं पत्थर के फूल फिल्म का गीत लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीत रविंद्र रावल का है, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मस्ती फिल्म का गीत आनंद राज आनंद की आवाज में। गीत समीर का है, संगीत आनंद राज आनंद का।

आनंद राय आनंद की आवाज में मस्ती फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत समीर का था, संगीत आनंद राज आनंद का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ चुनिंदा गजलें।

इब्राहिम अश्क की लिखी गजल भी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में। संगीत हरिहरन का था। आइए अब सुनते हैं अहमद फराज की लिखी ये गजल दिलराज कौर की आवाज में। संगीत गुलाम अली का है।

संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं शुमोना रॉय बिस्वास से मिर्जा गालिब की ये गज़ल।

संगीत सरिता कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिराक गोरखपुरी की लिखी ये गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में।

0: फिराक गोरखपुरी की इसी गज़ल के साथ संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का आज का अंक दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
2: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
1: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों,

0: स्वारो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: This is also one of the most ambitious.
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
4: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
5: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
6: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। यह कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मनोज सोनी का प्यार भरा नमस्कार।

क्रिमिनल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गीत इंदिवर का था, संगीत एमएम क्रीम का। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई थी आप सभी की, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनका परिवार, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी भाव्या निवेश और नियति कुमारी, सल्लार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मिराज और उनका परिवार, मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु सागर बलूजा और उनका परिवार, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक।

राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई थी आप सभी की, बुरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। सुनना चाहते थे विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन, दीक्षा और कुश मूणत, छत्रपति संभाजी नगर सुरेवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि सोहम और सदानंद, यहीं से विराज और उनका परिवार, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और देवाश्री, ग्राम बाघा मुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांकन, नंदनी, प्रकाश और गायत्री, यहीं से यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर, काजल, लखवीर, रानू, कृष्णा, छिंदो, प्रवीण, शीतल, रवीन, रंगीला, नवीन, निशान, अनमोल, चटकू और मटकू। मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश प्राप्त हुई आप सभी की, गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतिशा और मैक्स संधु, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, निवान, सौरव, शायना और उनका परिवार, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और उनका परिवार, सरगांव बाजार छत्तीसगढ़ से नसीब मोहम्मद, सलमा, रेहान और फैजान मोहम्मद। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है वो सात दिन।

वो सात दिन, इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं सुलक्षणा पंडित और यशुदास की आवाजों में इंदिवर का लिखा ये गीत, संगीत है राजकमल का, फिल्म का नाम है सावन को आने दो। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी की। मथुरा से सुनना चाहते हैं सबा अंसारी, शकील, हेना, बुशरा, गुलिस्तान, नंदिनी और अंजलि। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या और उनका परिवार। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकिब अलमास पानो पवार, मोइन शंकरलाल, वनीता, मोहम्मद हसनैन पवार और उनका परिवार। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म सावन को आने दो ये गीत, आवाज़ें सुलक्षणा पंडित और यशुदास की।

0: सावन को आने दो। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे सुलक्षणा पंडित और यशुदास की आवाज़ों में ये गीत। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे राजकमल। इसी गीत की फरमाइश प्राप्त हुई थी चीतलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश अधिरा और राजवी। MLB रोड ग्वालियर से इसी गीत की फरमाइश प्राप्त हुई थी। सुनना चाहते थे सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव और SK पप्पी। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश बेरडी से नानाजी लाम से मीना, तेजस, जय, हर्षिता और उनका परिवार। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से सुनना चाहते थे मोहम्मद याकूब, आसमा कुरैशी, यूसुफ, आसमा और उनका परिवार। जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, अल्ताफ, कल्लू, मल्लू, कालिया और उनका पूरा परिवार। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म सावन को आने दो से ये गीत। इस गीत के साथ ही मनचाहे गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
1: विविध भारती आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15।

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरावाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटे उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

सन 1948 में रोशन मुंबई चले आए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक हो गए। खुर्शीद अनवर उन दिनों फिल्म सिंगार को संगीत से सजाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान रोशन की भेंट हुई फिल्मकार किदार शर्मा से, जिन्होंने सन 1949 में रोशन को अपनी फिल्म नेकी और बदी के संगीत निर्देशन की कमान सौंपी। हालांकि फिल्म नेकी और बदी असफल रही, रोशन को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति का रास्ता मिल गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म बावरे नैन में संगीत दिया। बावरे नैन के निर्माता थे गायक।

राकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीत का रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं, बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छायागीत। छायागीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। अनमोल होते हैं प्यार करने वालों के नगमे, सितारों से कढ़ी चूनर ओढ़कर निकली है रात की परी, तब सजी है महफिल मोहब्बत के तरानों की। सितारे करते हैं जुगलबंदी हवाओं की थाप पर, लंबी रातें छोटी हो जाती हैं इस गूंज के साथ।

रात ने हवाओं से भेजा है पैगाम, आसमान के नाम। सुर्ख नीले आसमान पर फैल गई है लाली, नजर आ रही है चांद की परछाई। इस खूबसूरत फिजा में मन लिख रहा है प्रेम के गीत, कलम से झर रहे हैं सिर्फ प्यार के अल्फाज।

अंकुरी अंकुरी खिल जाता है सूरजमुखी, धूप की पहली किरण से गुलाब की पंखड़ी पर ठहरी ओस की बूंद मुस्कुरा उठती है। नरम धूप का टुकड़ा गुलमुहर सा सुंदर लगता है जब छा जाता है नशा प्यार का। छुई मुई हो जाता है मन जब मिलता है साथ चाहने वाले का।

ना कि कोई आया है नेह की पाती लेकर, कि कोई आया है अंजुरी भर प्यार का पैगाम लेकर। फिर जागती आंखों ने सजाया ख्वाब, और वही ख्वाब बन गया जिंदगी का मकसद। मन में कचनार की कलियां फूटने लगी, फूल बनकर महकने को आतुर हो उठी।

जब गहराता है प्यार का एहसास, तो जैसे थके पांवों को मिल जाती है मंजिल, जैसे दिल की धड़कनों में बज रहा हो कोई साज, मौसम का हर मिजाज भला लगने लगता है, मन से मिट जाता है जमाने के लिए रंज, नजरों को इंतजार रहता है हर पल उस शख्स का जिसने लिखा है नाम मन की स्लेट पर।

कभी कभी मोहब्बत के रंग में घुल जाता है उदासी का रंग, कभी कभी ख्वाबों का रंग फीका हो जाता है, कभी कभी मिलन की घड़ियां ठहर जाती हैं, कभी कभी इंतजार सिर्फ इंतजार रह जाता है। आती है याद लेकिन नहीं आता वो जिसका हो इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके

0: परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यूएनसीएलओ पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और यूएनसीएलओ के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
3: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK comprehensive